ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज रविवार है। सक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 5:58 हुए हैं। हाजिर हैं आपकी सेवा में अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का

0: केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का चिंतन।

घर में एक बच्चे ने कहा, समय बतलाइए। मैंने बता दिया, इतना बजकर इतना मिनट। दूसरे ने कहा, समय के बारे में बताइए। तुरंत कुछ नहीं सोचा। समय के बारे में संक्षेप में यथासंभव एक वाक्य में क्या कहा जा सकता है? क्या समय को परिभाषित किया जा सकता है? स्थूल ढंग से सोचो तो समय मतलब दिन और रात, अमूमन 24 घंटे, फिर इसकी आवृत्ति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, निर्धारित बिंदु, निर्धारित वृत्त। अगर समय इतना ही भर है तो मौसम खुशगवार रहते हुए हम क्यों बतियाते हैं कि समय ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? सूरज तो ठीक ठाक उगा है, जो आकाशी लक्षण है। रात भी वक्त पर आएगी, अप्रत्याशित न हो तो सुहानी ही होगी। व्यक्ति विशेष को भले ही स्वयं के बारे में प्रसन्न वचन कहते आपने सुना हो कि आजकल समय ठीक चल रहा है, उनका दुनिया के संबंध में शायद ही कभी किसी को कहते आप पाएंगे कि समय सकाल ठीक है। तो मोटा मोटी बात यही हुई कि समय कभी हमारे पक्ष में नहीं होता, वह कभी भी ठीक नहीं होता। हम सामने के समय के लिए बकते रहते हैं, उसे बुरा भला कहते रहते हैं और अतीत को स्वर्णिम काल बताते नहीं अघाते। पर सच ये है कि वह समय भी बुरा ही लगा था जब वह हमारा वर्तमान था। भविष्य के बारे में तो न ही सोचें तो अच्छा। वह जिनका वर्तमान बनेगा उनके लिए उनका दुर्भाग्य लेकर ही आएगा, तय है। आपको लगा होगा मैं आपको डरा रहा हूं, नहीं, सिर्फ बता रहा हूं। समय फकत समय कुछ नहीं है। समय एक सापेक्ष विषय है जो न काला है न सफेद। महत्वपूर्ण यह है कि उसका रंग तब खुलता है जब हम उसे स्वीकारते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस मस्ती से उसे स्वीकारा। स्वीकारने के अलग अलग ढंग से समय के अलग अलग रंग, उससे हम कहकर नहीं चल सकते। दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर लगाकर भी तो कवि ने हमें डरा ही दिया है। जहर और अमृत में बहुत फर्क नहीं है, दोनों सहोदर हैं, एक ही समुद्र से निकले हैं। ग्रहण करने का हमारा कौशल उसे हमारे लिए अमृत या विष बनाता है। बंगाल की एक लोक कथा याद आ रही है। एक राजकुमार पास के मंदिर में रोज पूजा के बाद प्रसाद लेता था। उसके दुश्मनों को षड्यंत्र सूझा, पुजारी को विष देकर राजी कर लिया। इसे प्रसाद कहकर राजकुमार को दे देना। राजकुमार आया, प्रसाद लिया, खा गया, नहीं मारा। पुजारी ने प्रसाद कहकर उसे जहर दिया था। उसने प्रसाद मानकर ही उसे खाया। समय जहर भी है, पूजा का प्रसाद भी। निर्भर आप पर करता है कि आप उसे भरोसे से पूरे आत्मबल के साथ जहर के रस में स्वीकारते हैं या प्रसाद के रूप में।

आज का चिंतन श्रोता आपने सुना हमारा ये कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम में। आइए आज की सुबह हम अपनी भक्ति की ज्योत जगाएं भगवान शिव के द्वार पर, क्योंकि हमारे बीच अब जग में समाहित होने वाले हैं भगवान शिव।

0: ओम नमः शिवाय ये जीवन की मुक्ति का महामंत्र है। ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे थे ये भजन नरेंद्र चंचल और साथियों के स्वर में। अब आइए सुबह हम अपनी भक्ति की जोत जगाए माँ भगवती के द्वार पे।
1: शेरों वाली माँ, सिंह पे सवार अष्टभुजी माता वैष्णो देवी के संसार में अपार भक्त हैं, परंतु भक्त शिरोमणि श्रीधर का नाम सबसे ऊपर है तथा जन जन के कल्याण के

माँ भगवती से मांग रहा ये वरदान। आपने सुना सोनू निगम और साथियों की आवाज में ये भजन।

0: कृष्ण और राधा के इस गीत का अभी आपने आनंद उठाया कार्यक्रम वंदना में। श्रोताओं लीजिए पेश है हमारी कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: शेरों वाली माँ, सिंह पे सवार अष्टभुजी माता वैष्णो देवी।

सब पर दया करने वाली होती है, कृपा करने वाली होती है। बिना भेदभाव के माँ सब पर अपनी कृपा बरसाती है। आपने सोनू निगम की आवाज में ये बहुत ही करुण गीत सुना। लीजिए कार्यक्रम के अंत में ये गीत।

सुन रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में अनाथ होके नाथ दर्शन दो नाथ ये भजन, और इसी भजन के साथ श्रोताओं का यूं वंदना अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए वंदना श्रोताओं को इजाजत।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर श्रोताओं लीजिए पेश है श्री रामचरित्र मानस गान। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का भाग संख्या 42 एपिसोड नंबर 42।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का भाग संख्या 42। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको रूबरू करा दें अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कई विशिष्ट कार्यक्रमों से।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही पल बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक गीतों का आनंद उठा सकते हैं कार्यक्रम लोकरंग में प्रातः 7:00। आज इस कार्यक्रम में आप लुत्फ उठा सकते हैं भोजपुरी लोक गीतों का। 7:20 पर होगा कार्यक्रम घर संसार परिवार कल्याण पे आधारित। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप डॉक्टर शिवानी यादव से जानकारी हासिल करेंगे बार बार गर्भपात कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषय पर।

श्रोताओ, आज है रविवार और 7:30 पर होगा हमारा बच्चों के लिए विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी, जिसमें आज आप सुनेंगे किड्स जोन हाई स्कूल श्री दयाल नगर हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। संकलन वाचन होगा वंदना अर्चना एवं अलका कुमारी की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक होंगे विक्रम कुमार रंजन।

श्रोताओं, प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:30 पर होगा वक्त प्रादेशिक समाचार का, जो आप तक पहुंचेगा आकाशवाणी रांची के माध्यम से, और 8:45 पर होगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का भाग संख्या 2। श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे प्रातः 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और सुबह 10 बजे का वक्त होगा दोस्तों आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग का। तो ये था श्रोता हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त झलक।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह की 6:54 और 12 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरम् उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानाम् आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि।

0: तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग।

दोस्तों, अपने माटी की स्वांधी स्वांधी खुशबू लिए लोक गीतों का ये कार्यक्रम लोक रंग आपके बीच, और आज मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव। तो चलिए साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनते भोजपुरी लोकगीत।

0: दोस्तों ऐसे ही और खूबसूरत लोकगीतों के साथ आप झूमेंगे बस कुछ देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: लोकरंग श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे भोजपुरी लोकगीत।

सैया तोहर खातिर हो ले बदनाम हम। ऐसा कोई गीत आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये गीत जब भी आप सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ में तो दिल बस खाना कूदता है। तो आइए सुनते चलते एक और बहुत ही प्यारा सा गीत शारदा सिन्हा के ही तर्ज पर। ये

दोस्तों, भोजपुरी के रंग ऐसे होते हैं जिसमें जीवन की कई सारी रस जो है घुले होते हैं, जीवन के कई सारे सिमटे होते हैं। ऐसे ही एक सार आपने सुना, अखिया में भर के पनिया। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम परिवार कल्याण पर आधारित कार्यक्रम घर संसार। भेंट वार्ता सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप, जिसमें डॉक्टर शिवानी यादव जानकारी देंगी कि बार बार गर्भपात कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस विषय पर उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी श्वेता रानी ने। तो आइए सुनते हैं घर संसार में ये भेंट वार्ता।
1: बार बार गर्भपात होने या करवाने से और गर्भपात निरोधक जो दवाएं होती हैं उनका प्रयोग करने से महिलाओं को किस किस तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमने शामिल किया है सदर अस्पताल हजारीबाग की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी यादव जी को। तो डॉक्टर शिवानी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर। वैसे तो चोरी छुपे जो गर्भपात करा उसका क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और किस तरह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उन्हें होती हैं?
2: गर्भपात आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अगर अपना बच्चा नहीं चाहती हैं तो उनको ये जानकारी नहीं है कि वो लीगली रूप से भी गर्भपात करा सकते हैं, जिसको हम लोग MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसके तहत ये सरकारी अस्पताल या क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक में जाके गर्भपात करा सकती हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कुछ मेडिसिन जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उनको गर्भवती महिला खा लेती हैं, जिससे उनको गर्भपात, उसके लिए अपने गर्भपात कराती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम होता है, उनको ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद, सीरियस हो जाने के बाद वो फिर अस्पताल या फिर क्लिनिक में आती हैं और उनके लिए उनका इलाज चलता है। इस कंडीशन को बचने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जाके मिलना चाहिए कि हमें गर्भपात कराने इसके लिए क्या उपाय किया जाए, ना कि उसको बार बार अपने मन से जो दवाई मार्केट में उसको खाने से उसका साइड इफेक्ट होता है और उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: बार बार गर्भपात कराने से शरीर में किस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं?
2: बार बार गर्भपात कराने से उसके शरीर में एक तो जो खून की कमी हो जाती है, खून की कमी से के साथ साथ उसको फ्यूचर में, मतलब भविष्य में गर्भ धारण करने में भी दिक्कतें आती हैं, इसलिए बार बार गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और उन्हें अगर फ्यूचर में, मतलब भविष्य में उनको बच्चे नहीं चाहिए तो अपने डॉक्टर से क्लिनिक में जाके गर्भ निरोधक की सलाह लेनी चाहिए और ताकि वो जो अपना भविष्य में बच्चा नहीं चाहते उसके लिए गर्भपात ना कराना पड़े।
1: इससे पहले आप बताई थी जो गर्भपात की प्रक्रिया है वो भी अस्पतालों में लीगल तरीके से किया जाता है, तो वो लीगल तरीके से किन किन परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है?
2: कोई भी महिला का ये अधिकार है कि अगर वो बच्चा नहीं चाहती है और उसके पीछे कोई भी कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं चाहती है, तो वो गर्भपात करा सकती है। हमारे गर्भपात के नियम एक्ट के तहत

0: आप 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच कभी भी आप गर्भपात करा सकती हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है और उनका एडवाइस लेना जरूरी है कि किस कंडीशन में कहाँ गर्भपात कराना है और कैसे करना है।
1: किसी किसी महिला को बार बार खुद ही गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात के क्या कारण हो सकते हैं?
0: स्वतः गर्भपात को हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। तो किसी महिला को अगर बार बार अगर हो रहा है गर्भपात, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। उसको इन्फेक्शन हो सकता है या और भी कुछ कारण हो सकता है। अगर उसको इन्फेक्शन है या फिर किसी और कारण है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और उसका इलाज करें कि क्या कारण है कि क्यों बार बार गर्भपात हो रहा है और उसका प्रॉपर इलाज संभव है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज है, अगर उसका शारीरिक बनावट में कुछ चेंज है तो उसका भी इलाज है। प्रॉपर इलाज होने पर बार बार गर्भपात से बचा जा सकता है।
1: गर्भपात के किस तरह के लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं जिससे महिलाएं समझ जाएं कि गर्भपात हो सकता है?
0: गर्भ धारण करने के बाद महिलाओं को एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि वो गर्भवती है कि नहीं। उसके बाद कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके लिए हम लोग सभी चिकित्सक लोग डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि उस कुछ भारी काम करना या कुछ ऐसे काम करना जिससे उसका गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है जिसको बार बार हो रहा है। अक्सर देखा जाता है या तो उसको ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होना, दूसरा है पेट में दर्द होना। हाँ, इस तरह से अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको आकर के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है या फिर गर्भपात से बचा जा सकता है या उससे बचने की क्या क्या तरीके हैं। उससे
1: बाजार में मिलने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, पिल्स होते हैं, उनका सेवन किस तरह से नुकसान पहुंचाता है शरीर?
0: गर्भ निरोधक गोलियां हम लोग जनरली दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, दूसरा होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है जिसको हम लोग उसी पिल बोलते हैं, भविष्य में गर्भधारण ना हो इसके लिए दिया जाता है ताकि वो उसका सेवन करें और वो गर्भधारण ना करें। और एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल जिसको हम लोग अनवांटेड और 72 पिल के नाम से भी जानते हैं, वो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। वो गर्भ निरोधक सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, ना कि रेगुलर यूज करने के लिए। महिलाओं को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो सोचती हैं कि यही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसको रेगुलर यूज करती हैं जिससे उनके मासिक धर्म का जो इरेगुलरिटी होना उस पर प्रभाव पड़ता है और उसके इन्फेक्शन बच्चादानी में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से। तो इसको रोकने के लिए इसका उपयोग ना करें या फिर इमरजेंसी कंडीशन होने पे ही 72 घंटे के अंदर उसको यूज किया जाए, रेगुलर इसको यूज ना करें।
1: एक अधूरा गर्भपात भी होता है, तो वो क्या होता है?
0: अधूरा गर्भपात में से इनकम्प्लीट एबॉर्शन, जब कभी किसी कोई गर्भवती है उसको ब्लीडिंग हुआ और वो ब्लीडिंग होता ही जा रहा है, वो बीच में किसी से सलाह भी नहीं ली कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इस कंडीशन में ये संभावना हो सकता है कि उसका गर्भपात हो चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। पूरी तरह से नहीं होने से उसको ब्लीडिंग होता रहता है, इस कंडीशन में वो आकर के वो डॉक्टर से सलाह लें, उसको हम लोग इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोल सकते हैं और उसका इलाज पूर्णतः संभव है और अच्छे से सरकारी अस्पताल या फिर किसी भी प्राइवेट में इलाज उसका अच्छे से हो सकता है।
1: मैम एक आखिरी सवाल, सुरक्षित गर्भपात क्या है?
0: सुरक्षित गर्भपात ये है कि जब किसी भी गर्भवती को ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी हैं और वो गर्भपात कराना चाहती हैं और गर्भपात कराने के लिए वो ऐसे संस्थान में जाएं जहाँ पे डॉक्टर हो, डॉक्टर का क्लिनिक जो MBBS डॉक्टर हो या फिर सरकारी अस्पताल या कोई भी अस्पताल जहाँ पे डॉक्टर हो, उनके द्वारा जो गर्भपात कराए जाए वो हम लोग सुरक्षित गर्भपात के अंतर्गत लाते हैं। और असुरक्षित गर्भपात हम लोग उन लोग बोलते हैं जो इल्लीगल तरीके से अनट्रेंड पर्सन द्वारा जो कराया जाता है उसको हम लोग इल्लीगल गर्भपात बोलते हैं, जो कि उससे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि आजकल सरकारी संस्थानों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सुविधा दी गई है और लोगों को ट्रेंड किया गया है ताकि वो सुरक्षित गर्भपात सेवा दे सके।
1: तो मैम आपने गर्भपात से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी, तो आपने समय दिया कीमती अपना और बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आप हमारी सलाह लेने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओ, परिवार कल्याण पे आधारित कार्यक्रम घर संसार में अभी आप सुन रहे थे बार बार गर्भपात कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इस विषय पर जानकारी दी डॉक्टर शिवानी यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिनसे बातचीत

इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:28:45 हुए हैं और हमारे श्रोताओं को विशेषकर हमारे बच्चों को इंतजार है अपने साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी का। तो बस कार्यक्रम फुलवारी कुछ ही पलों में

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं लीजिए पेश है बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किड्स जोन हाई स्कूल श्रीदयाल नगर हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन है वंदना अर्चना एवं अलका कुमारी का। प्रस्तुत करता है इस कार्यक्रम के राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: वंदना अर्चना
1: और मैं हूँ अलका।
0: तो बता दे जो रेडियो पे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को बता दे कि आज हमारे फुलवारी में आए हैं किड्स जोन स्कूल के बच्चे सिद्धयाल नगर हजारीबाग से।
2: तो सभी बच्चे शामिल हो गए हैं हमारे फुलवारी कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पहले बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे क्या सुनाने वाले हैं।
0: तो आप सभी तैयारी करके आए हैं? तो ठीक है, देखते हैं आप सभी क्या क्या तैयारी करके आए हैं।
2: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वंदना।
0: हाँ अलका,
2: वंदना कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं बच्चों के द्वारा गाई ये प्रार्थना। हाँ, तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ?
3: मेरा नाम श्रुति कुमारी है।
2: किस क्लास में पढ़ती है?
3: सिक्स में।
2: और आपका?
3: मेरा नाम सुरभि कुमारी हुआ।
2: और आपका नाम क्या?
4: मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, मैं सेवन क्लास में पढ़ती हूँ।
2: और आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम प्रिया कुमारी है।
2: किस क्लास में?
5: फाइव क्लास में।
2: तो शुरू कीजिए।
6: तुम्हें

0: क्या सुनाइएगा?
1: हम लोग देशभक्ति गीत सुनाएंगे।
0: तो सबसे पहले आपका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम मिंटू कुमार है।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: 7।
0: आपका?
2: युवराज सिंह।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 5।
0: शुरू कीजिए।

0: बदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगी जिंदगी में होंगे सब मगन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन जाने मन
1: आप क्या सुनाएंगी?
2: कविता।
1: आपका नाम क्या हुआ?
2: छाया कुमारी।
1: किस क्लास में पढ़नी है?
2: 2A।

वंदना, आइए अब सुनते हैं छोटी सी प्यारी सी बच्ची आरुषि की आवाज में यह एक प्यारा सा गीत।

0: Committee.
1: वंदना, इस बगिया में बहुत ही प्यारी सी, बहुत सी छोटी सी बच्ची है। नाम क्या हुआ आपका?
2: प्रियांशी कुमारी।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: हम किरजोन क्लास में।
1: किरजोन क्लास में पढ़ती हैं? ये तो स्कूल का नाम हुआ। क्लास क्या है आपका?
2: प्ले क्लास।
1: प्ले क्लास में पढ़ती। क्या सुनाने वाली हैं आप? कीजिए।
2: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हट गया उधर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
1: बहुत ही अच्छी आवाज में आप सुनाई हैं। अब हमारी बगिया में बच्ची पेश करेंगी, उस प्यारी बच्ची से उनका नाम और उनका क्लास पूछते हैं। आपका नाम क्या है?
3: सुन्दर कुमार।
1: और किस क्लास में आप पढ़ती हैं?
3: LKG।
1: LKG क्या सुनाएंगी?
3: हाथी राजा।
1: हाथी राजा। हाथी देखी है? नहीं देखी है। चलिए तो सुनाइए।
4: हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पुटर भाई चटर पुटर।
1: तो आपका क्या नाम हुआ?
5: वंशिका वर्मा।
1: वंशिका, आप क्या सुनाइएगा?
5: कम्युनिटी स्कूल।
1: अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप?
5: यूके।
1: रियल स्कूल आती हैं?
5: यस।
1: पढ़ाई में मन लगता है?
5: हाँ।
1: तो चलिए सुनाइए।
6: कम्युनिटी चिल्ड्रंस कम टू मी, आई विल टीच यू ABC, ABCDEFG HIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ. Oh dear me, fans as I land my ABC.
1: Very good. तो अलका, हमारे बीच एक प्यारी सी बच्ची आई है,
7: तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। आपका नाम क्या है?
5: सीका।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: LKG।
1: LKG में। आप क्या सुनाइएगा? पोयम सुनाइएगा, है ना? सुनाइए।
5: A little bell and a little light makes a man healthy and wise.
1: वंदना, एक छोटी सी बच्ची हमारे पास में है, ये कुछ सुनाने वाली है। आपका नाम क्या है?
8: जानवी।
1: जानवी, किस क्लास में पढ़ती हैं?
8: नर्सरी।
1: नर्सरी। आपकी फ्रेंड है? क्या क्या नाम है फ्रेंड का?
8: वंशिका श्रेया।
1: तो लड़ाई होता है या दोस्ती रहता है?
8: दोस्ती।
1: पोयम पढ़ना अच्छा लगता है या स्टोरी, क्या अच्छा लगता है आपको?
8: पोयम
1: पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
8: आलू का
1: चालू। बेटा, आलू की सब्जी खाती हैं? तो शुरू।
8: आलू का

0: तो बच्चों अभी एक प्यारी सी बच्ची ने बताया वो आलू उन्हें पसंद है। तो आप सभी कौन कौन जो हैं हरी सब्जियां खाते हैं? सभी बच्चों ने हाथ उठाया, पर इन्हें बाहर का खाना ज्यादा पसंद होता है। होता है ना ज्यादा बाहर का खाना पसंद? पर हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए।
1: बिल्कुल, हरी सब्जियां हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है और अपने हर दिन के भोजन में हमारी थाली में सब्जी जरूर रहनी चाहिए। देखते हैं किसी का वजन काफी बढ़ जाता है बाहर के खाने या फास्ट फूड खाने से ज्यादा होता है, लेकिन जो हरी सब्जियां हैं हमारे शरीर की हमारे वजन को एक बैलेंस बना के रखती है, नियंत्रित करके रहती है। तो हम लोगों को हरी सब्जियां अपने भोजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए, करना चाहिए ना। आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: हरी स्त्रोतम।
1: आपका नाम क्या है?
2: श्रुति कुमारी।
1: किस क्लास में है?
2: सिक्स में।
1: तो शुरू कीजिए।
2: जगत

0: दोनों क्या सुनाने वाली हैं?
1: भजन।
0: तो अलका, इनका नाम जानते हैं, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम प्रिया गुप्ता है।
0: किस क्लास में है?
2: मैं 7th क्लास में हूँ।
0: आपका?
3: मेरा नाम लवली सिंह है, मैं 7th क्लास में हूँ।
0: तो शुरू।
4: मीठे रस से भरी उरी राधा।

मोटी रूप धरे मन मोहे कोई न पावे पार। कान्हा नेत मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटी रूप धरे मन मोहे।

0: वंदना,
1: अलका,
0: एक प्यारा सा बच्चा आया है कुछ सुनाने के लिए। क्या सुनाने वाले हैं?
2: कविता।
0: कविता है तो आप अपना नाम बताइए।
2: अंश राणा।
0: किस क्लास में है?
2: UKG। उठो बालक हुआ सबेरा, चिड़ियों ने बस किया बसेरा, चहक रही है डाल डाल पर, कुदक रही है पात पात पर, देखो सूरज निकल चुका है, अंकास्तम सिकल चुका है, कलियों ने भी आंखें खोली, तुम भी अपने आंखें खोलो।
0: वेरी गुड। आप सभी तो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो सब सुबह उठते हैं? सूर्योदय से पहले सभी जाग जाते हैं? बहुत ही अच्छा। क्या सुनाने वाली हैं?
2: प्रार्थना।
0: प्रार्थना, नाम क्या है आपका?
2: श्री श्री रानी।
0: किस क्लास में है?
2: UKG।
0: तो शुरू कीजिए।
2: हम उस ईश्वर के गुणगान, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुणगान, उसे प्रेम से शीश नवाए।
0: वेरी गुड। क्या नाम है आपका?
2: सिप्रा।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: UKG।
0: आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: चंदा मामा कविता।

0: बाजा बाजा की तालियां मुन्नी को मनाएंगे रुक्मिणी खाएंगे।
1: तो अलका बच्चों ने बहुत सारी कविताएं सुनाई, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
2: क्या सुनाने वाले हैं?
1: तो कार्यक्रम में जो कुछ बच्चे हैं जो पहेलियां पूछेंगे, पहेलियों का जवाब देने के लिए आप सभी तैयार हैं?
3: जी।
1: तो पहले आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम मिंटू कुमार है।
1: तो पूछिए।
4: ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती?
1: सही है।
4: यस दीदी।
1: तो सही जवाब दिया बच्चों ने।
4: ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा होती है उतना ही कम दिखाई देती है?
1: क्या है वो चीज? किन्हीं को आता है आंसर? दिमाग पे जोर डालिए। नहीं पता, चलिए आप ही बता दीजिए।
4: अंधेरा, पैर नहीं फिर भी नाचता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं जाता हूँ।
2: आप लोग, क्या हो सकता है कि पैर नहीं लेकिन काफी दूर ऊपर तक चला जाता है?
1: लास्ट पहेली ये पूछ रहे हैं, सभी जवाब देने के लिए तैयार हैं?
4: हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता सर्दी में गायब हो जाता।
2: क्या होगा?
1: बिल्कुल सही। तो अलका एक बच्ची आई है, इनसे जानते हैं कि ये क्या पूछने वाली है।
5: मैं जीके का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ।
2: सारे बच्चे आंसर देने के लिए तैयार हैं?
1: तो सबसे पहले आपका नाम जानते हैं।
5: मेरा नाम है लवली सिंह, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ।
1: तो पूछिए।
5: लाल ग्रह रेड प्लैनेट के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है?
3: मार्स।
1: बिल्कुल सही जवाब है। आपका क्या नाम हुआ? तो नैतिक के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
5: पौधों को अपनी भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है?
1: बिल्कुल सही। क्या नाम हुआ आपका? पढ़ते हैं बस।
5: हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हम सांस लेते समय कौन सा गैस अंदर लेते हैं?
1: बिल्कुल सही। तो अलका ये दो बच्चे आई हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सुनाएंगी। आपका नाम?
6: मेरा नाम परिजी पांडे है।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं?
6: मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम तेजश्री सिन्हा है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ।
1: लोग क्या सुनाने वाली हैं?
3: गीत।

0: दीदी आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही है ना, कहानी सुनने के लिए तैयार है?
1: जी दीदी।
2: आप एक पत्थर

0: रख लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए। आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर मार दीजिए। फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। एकजुटता एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना तो हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा अपना समाज और ना हम।
1: तो बिल्कुल सही बात है कि एकता में बल होता है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहनी चाहिए,
2: है ना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं।
1: आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: मैं कविता सुनाने वाला हूँ।
1: आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम नैतिक कुमार है।
1: किस क्लास में है?
3: मैं फोर्थ क्लास में हूँ।
1: तो शुरू कीजिए।
3: तरह तरह के रंग रूप है, तरह तरह के वेश, लेकिन सब है भाई भाई एक हमारा देश। धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता। क्यों बेटे ही अपनी माँ को पहुँचाते हैं कलेश, आजादी की आन की इच्छा करना अपना कर्म। देश हमारा सबसे पहला देश हमारा धर्म, वीर शहीदों का है भाई यही अमर संदेश। घर घर अलग जगाना है, लोगों को समझाना है, ऊंच नीच के भेदभाव को मिलकर आज मिटाना है। बापू की इस भावना को मत पहुँचाओ ठेस, तरह तरह के रंग रूप है, तरह तरह के वेश, लेकिन सब है भाई भाई एक हमारा देश।
1: आप दोनों क्या सुनाने वाली हैं?
4: भजन।
1: आपका नाम?
4: मेरा नाम प्रिया कुमारी है।
1: किस क्लास में है?
4: मैं 5 में पढ़ती हूँ।
1: आपका?
5: मेरा नाम सुरभि कुमारी है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ।

0: अलका, अब कार्यक्रम से विदा लेने का भी वक्त हो गया है। धीरे धीरे जो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब हमें बच्चों से इजाजत देनी चाहिए।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम श्रुति कुमारी है।
1: आप किस क्लास में हैं?
2: मैं क्लास 6 में हूँ।
1: आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैं कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: तो शुरू कीजिए।
2: एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देख कर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया, कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में बैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें।

0: इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति कुछ भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाले हमारी भलाई के लिए कुछ काम कर रहा हो और इस तरीके से हमें सोचकर अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए।
1: इसलिए कभी किसी के लिए मन में बदले की भावना नहीं लानी चाहिए, है ना?
2: तो क्यों ना अलका, चलते चलते बच्चों के साथ एक प्यारा सा गीत सुनते।
0: बिल्कुल वंदना।

0: तो अलका बच्चों से विदा लेते हैं और इसी वादे के साथ कि हम लोग फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें होंगी और ऐसे ही मनोरंजन भरे कार्यक्रम होंगे।
1: बिल्कुल, तो हमें अलका
0: और मुझे वंदना अर्चना को कार्यक्रम फुलवारी से दीजिए इजाजत। जय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी। आज आपने सुना इस कार्यक्रम में किड्स जोन हाई स्कूल शिवदयाल नगर हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन था वंदना अर्चना एवं अलका कुमारी की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:58 इस वक्त घड़ी की सुइयां बजा रही है और 8 बजे श्रोताओं आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज जिन्हें हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और श्रोता आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार का आज का अंक प्रातः 8:30 पर आकाशवाणी रांची से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और

0: उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के

0: 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद

0: ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
4: The Kangrus Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
5: So, we immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapas jaye.
2: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
6: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and

0: And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centers and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bags silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। संदेश के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य, राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, दो और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा को पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। पुरानी एम्बुलेंस को हटाकर अत्याधुनिक एम्बुलेंस लाई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच जाए। व्यापारियों का प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। संस्था के महासचिव रोहित अग्रवाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से बातचीत की।
2: पूर्ण सपोर्ट मिला हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, हमारी सब कमेटी चेयरमैन का, पूर्व अध्यक्ष गण जो है सबका भरपूर सपोर्ट मिला और ये साल वाकई में मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो भी ये साल में किया वी वर जस्ट द फेस, इसका परिणाम विगत सालों से जो भी प्रयास होते आ रहे हैं हर कमेटी उससे ही हुआ है। दावोस का एक यात्रा हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि थी झारखंड सरकार के लिए भी और चेंबर के लिए।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से लाकर सीआईडी की टीम ने मुख्यालय में पूछताछ की। सभी से अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इधर सीआईडी ने आयोग के पूर्व परीक्षा उप नियंत्रक सरोजनी एनी तिर्की के आप्त सचिव सोनू कुमार और अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें एयर सुविधा के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रही हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं और स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन कल शाम द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 99.95% मतदाताओं के बीच एनुमरेशन फॉर्म का वितरण पूरा हो गया। अब तक 86.69% फॉर्म का डिजिटाइजेशन और 80.21% फॉर्म का सत्यापन किया जा चुका है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त आलोक कुमार ने नाला प्रखंड में करीब 95 एकड़ रकवा में फैले काजू बागान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि काजू की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
3: एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है, उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तभी हम लोग वो अवेयरनेस किसानों तक पहुंचा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि अगर वो काजू का प्लांटेशन करते हैं, क्लाइमेट है सुटेबल है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए प्रपोजल है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, यहाँ के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
0: हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने केरेडारी प्रखंड स्थित एनटीपीसी की कोल परियोजना चट्टी परियातू का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं को जाना। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जल्द इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगा।
4: विस्थापित परिवारों को देखने ही नहीं आए, बल्कि समग्रता में उनका विस्थापितों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्वासित किया जा सके, उनके जीवन की गुणवत्ता को कैसे बेटर किया जा सके और कैसे सारे रिसोर्सेज उन तक पहुंचाया जा सके, इसी कंटेक्स्ट जिला प्रशासन जिले भर की पूरी टीम आज ये देखने के लिए आई सभी पहलुओं पर इन विस्थापित परिवारों के लिए एक समेकित तरीके से एक कार्य योजना बनाई जाए।
0: मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा समेत आसपास के जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश होगी। मस्कट में चल रही महिला एशियन हॉकी 5 इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 8-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की खिलाड़ियों संदीपा कुमारी और श्रुति कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-1 गोल, जबकि पुष्पा मांझी ने हैट्रिक लगाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन खत्म होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, धर्मेंद्र अब शिक्षा के प्रधान नहीं, सीजेपी का आंदोलन खत्म। हिन्दुस्तान ने लिखा है, केंद्र सरकार ने सीजेपी की सभी 3 मांगे मानी, जंतर मंतर पर देर रात तक जश्न मनाते रहे प्रदर्शनकारी। दैनिक जागरण की लीड है, जेपीएससी के गिरफ्तार आरोपियों से सीआईडी ने पूछे सवाल, काली सूची में डाली गई कंपनियों को परीक्षा लेने का जिम्मा कैसे मिला। दैनिक भास्कर लिखता है, चक्रधरपुर रेल मंडल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की कार्रवाई, रेलवे के इंजीनियर 4 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, 15 मिनट में जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का है लक्ष्य, राज्य में 108 सेवा को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता मामले में सीआईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, 2 और आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक के लिए जारी की भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और महिला एशियन हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, भारत ने कजाकिस्तान को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा।

0: वो काक साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था, आज का मेरा हीरो। और
1: आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय FM 102.1 MHz पर श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 2, लेकिन उससे पहले सुनते चलते कुछ जरूरी संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये इस कार्यक्रम का भाग संख्या 2 है।
2: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
3: Community, ek community jab koi problem se joojhte hain, ye ho sake ki ek kharab air quality ho, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारे देश में, दैट इज जस्टिस। अब एनवायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पर प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज्यादा नजदीक रहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपर मार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीजों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वी है।

0: तो पहले हम शुरू करते हैं एआई नोटिफिकेशन के बारे में। एआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विथ सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग अप विथ अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पे वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है। और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़ ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको

0: मालिश करके वहां पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है, ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है। यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है, जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है, जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज, वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन। एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस, वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड व्हेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग। Certainly, rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's. But it's a bottoms-up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल Ministry of Environment ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशन कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनसीएप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनसीएप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज बना दी और क्लियरेंसेस दे दी। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वॉयलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पेंसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो वो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसी भी है, एसपीसी भी है, सीआर को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं।

विवेक भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एजेंट विनोद। इस फिल्म का गीत आवाजें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल की ये रचना। मोहित चौहान और सुजैन डी मेलो की आवाजें। रॉकस्टार फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम अजहर। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। मनोज यादव ने इसके बोल लिखे हैं। प्रीतम का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने। आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

कुबेर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

में सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासुवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाऊस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसि आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसी लागला लंकेवर काल कठिन आज पातला भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन।

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

हिंदी में सुधीर फड़के की कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हैं। भाभी की चूड़ियां के अलावा उनकी एक फिल्म आई थी गोकुल का चोर।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 गीगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: नमस्कार दोस्तों, कुदरत के ढेरों रंगों में से चुराकर कुछ हसीन सुर्ख रंग हाजिर हूँ इस पल आप दोस्तों के बीच। दोस्तों, मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव और आप सभी को हमारा जोहार, गुड मॉर्निंग। हजारीबाग वासियों, आज इस संडे यानी कल फुर्सत का दिन, मस्ती और मर्जी का दिन, लेकिन इस मर्जी और मस्ती के दिन में कहीं आप भूल न जाएं उनको जिनकी बदौलत आपकी ये मर्जी और मस्ती है। इसीलिए तो आज के दिन आपका हाथ थामने के लिए हाजिर हूँ बिल्कुल अपने सही समय पर आपके FM 92.1 MHz पर आपके प्रोग्राम में, जिसका नाम है हेलो हजारीबाग। दोस्तों, बातें होंगी ढेर सारी और आपके साथ हम भी गुनगुनाएंगे आज संडे के लुत्फ उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिलाएंगे उन वीर शहीदों की जिसकी याद लेकर आया है आज का ये 26 जुलाई। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

देखूं तो लफ्ज तुम होती हो, सोचूं तो ख्याल तुम होती हो, और मांगूं तो बस मन्नत तुम और तुम होती हो।

तो दोस्तों इस गीत को सुनकर आपके दिल का मौसम तो जरूर बदल गया होगा इस पल। तो भाई आपके दिल का मौसम बदला है, लेकिन हमारे शहर का मौसम किस तरह से बदला है इसका जायजा लेते हैं। और चलिए आज जानते हैं कि हमारे शहर हजारीबाग के मौसम का मिजाज क्या रहेगा। दोस्तों अगर मौसम विभाग की माने तो आज हमारे शहर हजारीबाग का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 32 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी धूप बनी होगी और थोड़ा सा बादल छाया रहेगा आकाश में, और इस धूप छाव में हम मस्ती करते रहेंगे अपने आज के इस मस्ती भरे दिन की।

साथ ही हमारे विचार हमारे आने वाले जीवन की आगाज है, इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे पॉजिटिव सोच के साथ जो हमारे जीवन को दे सकती है एक मुकम्मल जगह और हमारे देश को बना सकती है मजबूत। क्योंकि आज है 26 जुलाई और आज का दिन है हमारे देश के लिए विजय के लिए और जश्न मनाने के लिए। तो ऐसे में आज के विचार भी हमने समर्पित किया है अपने भारत माता को। दोस्तों हेलो हजारीबाग, आज आपसे कहता है देश प्रेम वो भावना है जो व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर मातृभूमि की सेवा और उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रेरणा देती है। तभी तो हर भारतीय का दिल आज कहता है हर वक्त मेरी आंखों में धरती माँ का स्वप्न है, जब कभी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन रहे।

आजाद भारतीय का दिल अपने देश को सलाम करता है और कहता है अपने उन वीर जवानों को जो उनके साथ आज है नहीं, लेकिन उनका समर्पण, देश के प्रति उनका बलिदान कहीं गया नहीं, हम सब के साथ है। उन सभी को सलाम करते हुए चलिए हम आपको लिए चलते हैं आज यानी 26 जुलाई की खास कहानी की ओर।

0: साथियों, आज है 26 जुलाई भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम दिवस जिसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे भारतीय सेना के अदम्य साहस, कठिन पहाड़ियों पर शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा है। दोस्तों, वर्ष 1999 में लगभग 60 दिनों तक चले इस कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों ने शून्य से नीचे के तापमान में ठिठुरते हुए लगभग सीधी खड़ी चढ़ाइयों पर दुश्मन को मात दी थी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। युद्ध की परिस्थितियां और चुनौतियां क्या थी उन दिनों 1999 में, चलिए हम बात करते हैं उनके संदर्भ में। लद्दाख की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में टाइगर हिल तोतोलिंग पर दुश्मन छुपे बैठे थे। इनको करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने बिना नियंत्रण रेखा पार किए घुसपैठियों को खदेड़ने का अदम्य साहस और संकल्प लिया और इन सैनिकों को लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। हमारे सैनिकों ने गोलियों की बौछार के बीच रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ाई की। फिर दोस्तों, युद्ध के दरमियान करीब 500 से भी अधिक वीर जवान हमारे अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनके शरीर में प्राण बचे थे और अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन चट्टानों की, उन चोटियों की आजादी के लिए अंतिम सांस तक डटकर दुश्मनों से लड़ते रहे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और मेजर राजेश सिंह अधिकारी जैसे सुरवीरों ने अपने अद्भुत पराक्रम का इतिहास रचा। साथ ही बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों में अपने साथी जवानों के साथ दुश्मनों से चोटियों को वापस छीनने का जोखिम उठाते रहे, जिम्मा उठाते रहे।
1: मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी, नाचना जरूर है।
0: और दोस्तों, 22 जून का वो दिन था जब 20 जून के बाद 1999 को उन्होंने रणनीति के तहत महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 चोटी को दुश्मनों से छुड़ा लिया और उस पर अपना तिरंगा लहरा दिया। और इसी बड़ी जीत के बाद उन्होंने रेडियो के जरिए अपना प्रसिद्ध नारा देशवासियों को दिया, ये दिल मांगे मोर।

साथियों, शहादत के पहले विक्रम बत्ता का जो शब्द था वो भारतवासियों के आंखों को आज भी नम कर देता है। कैप्टन विक्रम बत्ता ने कहा, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और साथ ही उनकी इन्हीं वीरता के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि कारगिल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के बलिदान की वो अमर गाथा है जिसे पूरी दुनिया गुनगुनाता रहेगा, जमाना गुनगुनाता रहेगा, आने वाला हर कल गुनगुनाता रहेगा।

तो दोस्तों, आज हमने हेलो हजारीबाग के जरिए अपने उन वीर शहीदों को आज कारगिल विजय दिवस के दिन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें सलाम करते हुए चलिए हेलो हजारीबाग के अगले सेगमेंट की ओर आपको लिए चलते हैं।

0: श्रोताओ, आगे हमारे हेलो हजारीबाग में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, क्योंकि ये कहानी आपको कहती है जीवन की एक छोटी सी सबक। और इस कहानी के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि फिलहाल कुछ संदेश आप तक।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हेलो हजारीबाग, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है ईमानदार बालक और रुपयों से भरा थैला। साथियों, एक छोटे से गांव में सोहर नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो लकड़ी काट कर अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ी बेचकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे जमीन पर एक चमड़े का थैला मिला। सोहन ने जब उस थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने के सिक्के और कुछ नोट थे। साथियों, इतने सारे पैसे देखकर एक पल के लिए सोहन की आंखें चौंधिया गई। वह सोचता है कि इन पैसों से वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है और अपनी माँ के लिए एक अच्छा खाना भी ले जा सकता है, कपड़े भी खरीद सकता है। लेकिन तभी सोहन के मन में उसके संस्कारों ने आवाज दी। उसके मन ने उससे कहा, ये मेहनत की कमाई नहीं, जिस किसी का भी ये थैला खोया होगा वो बहुत दुखी होगा। चोरी का धन या बिना हक का पैसा किसी को सुख नहीं दे सकता। सोहन ने बिना किसी लालच के उठाया उस थैले को और उस थैले को सीधे गांव के मुखिया के पास ले जाकर दे दिया। उसके मुखिया को सारी बात जानने की जिज्ञासा हुई, तब उसने भारी भारी से मुखिया जी को सारी बात बता दी। तब साथियों, मुखिया ने जब पता लगाया तो पता चला कि गांव में एक बड़े साहब रहते थे, एक बड़े व्यापारी रहते थे। ये थैला उन्हीं का था जो रास्ते में भूल से गिर पड़ी थी। व्यापारी जब मुखिया के पास आया तो उसने देखा कि उसका एक भी सिक्का उसमें कम नहीं था। व्यापारी सोहन की महान ईमानदारी और सच्चाई भरी कदम की सराहना करते खिल उठा। उसने इनाम के तौर पर सोहन को थैले में से बहुत सारे रुपए देने चाहे, पर सोहन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए। इस पर व्यापारी ने सोहन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसकी माँ को एक स्थायी नौकरी दे दी और सोहन की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन इसका परिणाम हमें श्रेष्ठ और सम्मानजनक बनाता है। झूठ या बेईमानी से कुछ पल की खुशी तो मिल सकती है, पर स्थायी सुकून और मान सम्मान केवल सच्चाई से ही मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए और हर कदम हमारा सच्चाई और ईमानदारी भरा होना चाहिए।

तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और ये लेसन भी जरूर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। तो चलिए हेलो हजारीबाग, आपको इस कहानी के बाद लिए चलता है एक सुमधुर गीत की ओर।

और दोस्तों इस प्यारे से गाने के बाद हेलो हजारीबाग आपको लिए चल रहा है कुछ प्रमुख स्थानीय खबरों की ओर, जो आज है हमारे अलग अलग अखबारों की सुर्खियां।

दोस्तों, दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो आज का हेडिंग है युवा डटे तो प्रधान हटे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है दोस्तों। आंदोलन खत्म हो चुका है, जिंजिस की केस हटेंगे और मुआवजे भी मिलेंगे, ऐसा आश्वासन मिल गया है हमारे जिंजिस को हमारी केंद्र सरकार की ओर से।

साथियों, बात करें अगर प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर की हेडिंग है हमारे शहर हजारीबाग की खास खबर से, जिसमें माननीय डीसी ने वरीय अधिकारियों के साथ किरीडारी चट्टी बरियातू पंचायत का दौरा किया और विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बीड़ा उठाई। शहरवासियों, उपायुक्त हेमंत सती ने शनिवार को वरीय अधिकारियों की टीम के साथ केरीडारी प्रखंड के चट्टी बरियातू पंचायत का दौरा किया। इस पंचायत में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं एवं विस्थापितों की समस्या का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा एनसीसी जो है उन पर भी काबू लगाने की पूरी कोशिश करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। उन्होंने समाधान से संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए ग्रामीणों को सामने आने की गुजारिश की।

साथ ही एक खबर आ रही है हमारे यूनिवर्सिटी यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, आगे गढ़े संस्कार पीढ़ी कार्यक्रम में छात्राओं को संदेश दिया है हमारे वाइस चांसलर ने कि चरित्र निर्माण ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। और साथ ही बता दें कि इस खबर को प्राथमिकता दी है हिंदुस्तान अखबार ने। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना शिक्षा का उद्देश्य नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना, अनुशासन का पाठ पढ़ाना, संवेदनशीलता, मानवतावादी बनना, इसके साथ राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को भावना विकसित करना ही वास्तविक शिक्षा है।

एक अच्छी सी खबर छपी है हमारे इसी हिंदुस्तान अखबार में। खेल से जुड़े की बच्चों की कड़ी मेहनत और अनुशासन को जीत मिलती ही मिलती है, और इसके लिए खबर है हमारे स्टीफन्स स्कूल में खेले जा रहे खेल से।

साथियों, सेंट स्टीफन स्कूल की टीम ने हजारीबाग के खेल जगत में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बिहार के कैमूर में हुए क्लस्टर चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल कर जिले को और राज्य को एक सम्मान प्रदान किया है। 18 से 22 जुलाई तक चलने वाले मानव भारतीय हेरिटेज स्कूल में आयोजित क्लस्टर में लगातार सातवीं बार क्लस्टर गोल्ड चैंपियनशिप जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्राचार्य कल्पना बारा ने इसे कठिन मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ साथ प्रशिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और का प्रतिफल बताया। इससे स्कूल की खुशियों का माहौल व्याप्त है। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ अखबारों की सुर्खियां। फिलहाल कार्यक्रम में आगे और भी कुछ बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

और इस प्यारे से गाने के बाद चलिए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं कुछ और खास खबरों की ओर जो देश और विदेश के आंचल में समाए हैं। जिस तरह से हर दिन का एक इतिहास होता है, आज के दिन का भी खास इतिहास है दोस्तों। 26 जुलाई 1997 का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्यों है खास, अब आइए इस पर एक नजर डालते हैं। छब्बीस जुलाई का दिन श्रीलंका ने एशिया कप जीता। खमेर रूस के नेता पोलपोट को आजीवन कारावास हुआ। 26 जुलाई 1998 महानतम महिला एथलीट जैकी जैनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया था। और 2000 में आज ही के दिन फिजी में विद्रोही नेता जॉर्ज स्पिट को सेना ने गिरफ्तार किया था। साथियों, 26 जुलाई 2002 का इतिहास। इंडोनेशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सुहातो के पुत्र को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ आज ही के दिन हुई थी। और 2004 की 26 जुलाई की प्रमुख घटना इस प्रकार है दोस्तों। 26 जुलाई 2004 ईरान की विदेश मंत्री कमल करजई ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर वार्ता की। अर्जेंटीना को हराकर आज के दिन फुटबॉल का कोपा कप ब्राजील ने जीत लिया था। छब्बीस जुलाई 2005 नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ था। 26 जुलाई 2006 लेबनान में इजराइल हमले में 4 संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मारे गए थे। 26 जुलाई 2007 पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हल्फ 7 का सफल परीक्षण किया था। आर्थो से एक खबर अंतरिक्ष से आ रही है कि आज ही के दिन 26 जुलाई 2008 को यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की बाहर एक और नए ग्रह की खोज की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, 26 जुलाई कई हमारे महान हस्तियों का जन्म दिवस है। सबसे पहले बता दें कि 1914 में 26 जुलाई के ही दिन जन्म हुआ था विद्यापति कोकिल का, जो है भारत की प्रसिद्ध कवित्री। आज ही के दिन 1904 को मालती चौधरी का जन्म हुआ, जो थी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा गांधीवादी। और 1874 में आज ही के दिन जन्म हुआ छत्रपति साहू महाराज जी का, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी के रूप में उनका नाम आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, चलते चलते हमारा ये हेलो हजारीबाग आपको लिए चलता है एक बार मस्ती और मजे की ओर इस गीत की धुन में थिरकने के लिए।

और इस प्यारे से गाने के बाद चलिए दोस्तों हमारे कार्यक्रम का बिल्कुल अंतिम पड़ाव, और इस अंतिम पड़ाव में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा संदेश। दोस्तों कुदरत की तरह जिंदगी में भी कई मौसम होते हैं, इसलिए प्रकृति की तरह जिंदगी के भी हर मौसम का आनंद उठाइए। जीवन में सुख आए या दुख आए, आप हर मौसम में अपने आप को अडिग रखे, धैर्य पूर्वक रखे और हर मौसम में अपने कदम आगे बढ़ाते रहे पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ। जिंदगी आपको बस अपना सा लगेगा और हर मौसम आपका अपना मौसम होगा।

दोस्तों, हेलो हजारीबाग में आपके साथ चलते चलते हमने पूरे एक घंटे में बस 10 मिनट बाकी है उतने समय काट लिए हैं हमने आपके साथ कई बातें।

शेयर की, जिंदगी से जुड़ी, प्रकृति से जुड़ी, अपने देश भक्ति से जुड़ी, और साथ ही साथ हमने आपको अपडेट किया है विभिन्न तरह की खबरों से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल की थी। तो जाते जाते अब वंदना श्रीवास्तव आपसे करती है वादा कि अगले सप्ताह फिर से हम हाजिर होंगे आपके बीच कुछ ऐसे ही अनमोल बातों को लेकर, ऐसे अनमोल गीतों को लेकर आपके इसी महफिल में। तब तक के लिए हेलो हजारीबाग की आज की महफिल से दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत इस धुन के साथ।

FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:53 और 25 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात।

0: आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है, तभी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव वीडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
5: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है।

मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहने की क्षमता विकसित हुई है, आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने

गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को 1 चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति
और महिलाओं का आत्मविश्वास

भारत क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए, इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात गिर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गिर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं,
दुनिया में जिनकी पहचान बन रही।

लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में

सूरज कुमार देव बर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंगप्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: जी आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए।

0: कृते गौरवस्य दिवसः अस्ति। अयं तेषाम् असंख्यानां वीराणां स्मरणस्य दिवसः अस्ति यैः भारत मातुः स्वातन्त्र्यार्थं स्वस्य सर्वस्वं समर्पितम्। तेषां त्यागेन तपसा च अद्य अस्माकं हस्ते त्रिरङ्गध्वजः अस्ति। अस्मिन् त्रिरङ्गध्वजे अस्माकं संविधानस्य आदर्शाः निहिताः सन्ति। सखायः, विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु हर घर तिरङ्गा अभियानेन समग्रः देशः अद्भुततया भावनया सम्बद्धः अभवत्। प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रत्येकस्यां वीथ्यां च त्रिरङ्गध्वजस्य उत्सवः दृश्यते। अस्मिन् वर्षेऽपि अस्माभिः हर घर तिरङ्गा अभियानं सम्पूर्णेन उत्साहेन अग्रे नेतव्यम्। स्वगृहे पूर्णसम्मानेन त्रिरङ्गध्वजः आरोहणीयः। सखायः, प्रतिवर्षम् ऑगस्ट मासस्य पञ्चदशदिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति। अस्मिन् वर्षेऽपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु। अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि। सखायः, अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव। आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः। देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत्पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु। भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी का रांची।
3: लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह की CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है।

से आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में, संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रियल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
1: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मश्को। उस क्षेत्र में आगे उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में। वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था, उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी। तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं अखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आज आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबाइलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे। लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था, और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन। लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज में दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
0: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, उसकी सुबह कैसी हुई थी? हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
1: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला

0: इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं, उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी। लहू लुहान किया, भी गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि तो सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे की ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल राजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था वो कर्नल राजिंदर सिंह, उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई, वो क्या

0: कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद 3 पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का, सैनिक से मिला आप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं, परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंग करना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या 2-3 और ऐसी जगह है, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए। वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने की बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकेंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है, और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉइस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है, ये एक चैलेंज है। शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी, और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन एक साल मैं हॉस्पिटल में रहा और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे पांच जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बनके कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने की करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं चार कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और पीटीएसडी के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माय केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास्ट की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद किस किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो
1: जी।
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है
1: जी,
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी
1: जी,
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: तीन बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इम्पोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को

0: और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पर जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है, उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ भाव होते हैं। उन शब्दों से आपको चुनने होते हैं गाने और उन भावों से लिखनी होती है आपको टिप्पणी। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा दें। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं है, उनके लिए खास तौर से, जो लोग जुड़ चुके हैं तो इन शब्दों को तो चुने ही, गानों को तो चुने ही, लेकिन इनमें जो भाव छुपे हैं, जो सवाल छिपे हैं, इससे जुड़ी हुई बातें भी साझा करें। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, ये आज की इबारत है जो पढ़ रही हूँ। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, प्यार वो वृक्ष है जहाँ धूप छांव दोनों होते हैं। बताइए अब धूप छांव वाले गाने। गम की कड़ी धूप में कहती है जिंदगी, हाय वो दिन कहाँ गए, वापस क्यों ना आए। इस पर तो बहुत सारे गाने होंगे। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी, दुनिया एक मेला है, यहाँ हर चेहरा अपना नहीं होता, न मिले फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। फिर एक रोज जिंदगी कान में आकर धीरे से बोली, हर किसी की मोहब्बत में वफा नहीं होती, लेकिन बेवफाई का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। फिर एक रोज जिंदगी मुस्कुराई और बोली, लिखो एक खत और वादा करो। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया, चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले पूरे करने हैं अपने सारे ख्वाब, नींद में देखे सपने भले कहाँ पूरे होते हैं, भला कहाँ पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं उनके जिनमें होता है हौसला, और फूलों से भी घर बना लेते हैं। फिर जिंदगी आखिरी बात ये बोली कि शिकायतें कम करो, सफर से मोहब्बत करो, जो राह चुनी है उसी पर चलते जाना। तो अब तो मुझे लगता है पढ़ने के बाद आपके जहन में बहुत सारे गाने कौंध रहे होंगे। कौन से वो गाने हैं जो इस वक्त कौंधे हैं, लिखिए जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे वहां। और साथ में हमारी बातें और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। यहाँ आज एक शब्द आया है मेला, तो जरा बताइए कि मेले से जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में आए हैं। और आप ये भी बताइए कि मेला देखने आप पिछली बार कब गए थे और मेले से जुड़ी हुई कौन सी याद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मेला वाला गाना यहाँ सुनाएंगे, जी नहीं, आप मेले वाले गाने चुनिए। अगर बहुत सारे श्रोता कोई अच्छा सा गाना चुन लाएंगे तो हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, फिल्म साथ साथ। पहली लाइन में ये शब्द कहीं आता है इस गाने से जुड़ा हुआ, जरा बूझिए और बताइए। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम भी आपको पूछने हैं। तो आज आपको पूरे सफर में सुरीला सफर के साथ रहना है और बीच बीच में जो सवाल हम पूछते जाएंगे उसके जवाब भी देने हैं आपको। हीरो हीरोइन का नाम फिलहाल बूझिए।

0: साथ साथ फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत की पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छांव होती है परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है और दुनिया का मेला, मेले में लड़की और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज़ में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है बल्कि जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना?
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्यभर में 28 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन, हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए, लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के

0: सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का करेंगे उद्घाटन, टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है।
1: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस से 12 अगस्त तक हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के तहत साहिबगंज जिले में मतदाता सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से जारी है। जिले के सभी 8,72,148 मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण पूरा हो चुका है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ

0: CEIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी की पकरी बरवाड़ी कोयला परियोजना में अपराधियों ने दो हाईवा वाहनों पर फायरिंग कर शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। घटनास्थल से एक आपराधिक गिरोह के नाम का पर्चा बरामद हुआ है, जबकि सोशल मीडिया पर जारी एक ऑडियो में हमले को लेकर अलग दावा किया गया है। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने नवलशाही थाना परिसर में घुसने की कोशिश की और आसपास के गांवों में भी नुकसान पहुंचाया। कोडरमा के जिला वन पदाधिकारी सौमित्र शुक्ल ने बताया कि फसलों या घरों को हुए नुकसान का नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
1: 25 से 30 हाथियों का झुंड पिछले 20 दिनों से लगातार कोडरमा में भ्रमणरत है, मरकच्चो एरिया में, जयनगर एरिया में। हमारी टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही है और गांव से दूर रखने की कोशिश कर रही है। सभी से यही अपील है, वन विभाग के नंबर प्रसारित हैं, उन पर सूचित करें। टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि फसल का भी नुकसान होता है या कोई दीवार वगैरह भी टूटती है तो निर्धारित मुआवजा ससमय आपको दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के खेल इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। सुरक्षा के मोर्चे पर रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और मोराबादी क्षेत्र में ड्रोन तथा CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इधर भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वीरों को किया याद, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, कैच द रेन अभियान और हथकरघा दिवस में जन भागीदारी का आह्वान। आज देशभर में मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को किया नमन। राज्यभर में 28 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर कैंपेन। हेपेटाइटिस बी और सी की जांच तथा समय पर उपचार पर रहेगा विशेष फोकस। झारखंड पुलिस ने अभियान चलाते हुए 890 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए। लोगों से अपील, ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का करेंगे उद्घाटन। टिकट या पास से ही मिलेगा प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है जरा बताइए। गाने में कौन कौन से शब्द हैं? गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियां याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो जरा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्योहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते

हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है, तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे, तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे, जब ऊपर जाते तब तो ठीक था लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल है जो चलती है तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था खुले मैदान में, बहुत सारी चीजें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था, एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था, उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है, तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है, वो वाला मेला, बचपन वाला ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम, बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूं तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है। हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था। और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती है और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज़, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है परीक्षित साहनी, जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, यहां कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफर इतना ही।

श्रोताओं नमस्कार, आज है कारगिल विजय दिवस। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज की त्रिवेणी इसी विषय पर। 26 जुलाई भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और दुनिया के समक्ष अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई से जुलाई तक चला, सन 1999 में, लगभग 60 दिनों तक। ये 60 दिन हमारी सेना ने पूरी वीरता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ युद्ध किया। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये कब्जा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इन क्षेत्रों से निगरानी रखी जा सकती थी और यह सिद्ध हो सकता था घातक भारत की राजधानी के लिए भी।

परेशान है तू। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से दुर्गम पहाड़ों, शून्य से नीचे तापमान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराकर हमारे वीर जवानों ने विजय का इतिहास रचा। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम वत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम वत्रा का नारा ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। हम सभी इन वीरों की वीरता को प्रणाम करते हैं। 527 वीरों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

कारगिल विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस की विजय थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षित सीमाओं को और शांतिपूर्ण जीवन के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग और बलिदान है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीरों को श्रद्धा पूर्वक नमन करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक वीर को हम सभी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कुछ ये कि सरहद पर खड़े सैनिक केवल भूमि की रक्षा नहीं करते, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों, विश्वास और भविष्य की भी रक्षा करते हैं। सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और हमारी रक्षा में अडिग अचल खड़े हुए प्रत्येक जल थल नभ के सैनिक को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल

0: पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
0: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले माय गोव पोर्टल पर अपने

विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +38 09335 9958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है।
और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की

0: राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंट कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वर्तमान में देश में रक्षा क्षमताओं के विस्तार की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की।
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
0: मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित 4 अड़ी आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रमों को सुना और देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया और लोगों से उन्हें आत्मसात करने का आग्रह किया। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के तेज गति से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा इस सप्ताह की। इस दिशा में सरकार ने पहल की है। लोकसभा में कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक की पेश करेंगे। यह विधेयक

0: परीक्षाएं अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जाएगा। इधर राज्य में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीतिक मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद इसके औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। 7 अगस्त को विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस बार मॉनसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान अनुपूरक बजट के अलावा सरकार कुछ अन्य विधायी कार्यों को निपटाना चाहेगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ बड़का गांव स्थित पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गोलीबारी की घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
1: छोटे हथियार का इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसमें प्रिंस खान का पर्चा छोड़ा गया और उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी अपराधी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रिंस खान एक ऑडियो की जगह पे भेजा है कि 40 गोली फायरिंग की गई है, उस तरह की बात यहाँ पे स्पॉट पर नहीं दिख रही है। 5 खोखा हम लोग को मिला है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंसर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। इससे पहले रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज टूर्नामेंट के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की। श्री गंगानगर से दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल,

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित दांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: दो दो, बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा जाता।
2: इतनी जोर से नहीं हंसा जाता। सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की मेज पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब
4: मेरी दोस्त

0: तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीटती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
0: हाँ, मैंने भी सुनी।
1: आखिर वो किसको बुलाता है?
0: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
2: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
0: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
3: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
0: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
4: हाँ, ये तो है।
3: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेलियत, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर।

0: ओह गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है।

फौजिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुलह भी तो की है अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओ, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
0: फौसिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा? लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घोल लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
2: अरे, ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहेल, जो तुमने किया, हे भगवान, इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन? नीलम।
2: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो, तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: आ, मेरी बच्ची। वो सुहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
3: मेरा आखिरी सलाम
0: फौजिया।
3: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजिया,
3: अब मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: फौजिया,

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: औसी, मेरी बच्ची।
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी माँ तो नहीं।
1: माँ की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ

0: फौजी मेरी जिंदगी है।
1: नीलम जी,
0: ये नाम आपका है मिस्टर सुधीर?
1: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
0: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
2: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब भी।
3: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
2: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
1: खड़े हो जाइए?
2: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
0: नहीं फौजी, ये तुम
2: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
1: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
2: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अब्बी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
3: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
2: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
3: फौजी
0: मेरी बच्ची,
1: मेरी बेटी।

प्यार, मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड में भी लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के गोंदा में मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीदों, जवानों और को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस मौके पर राज्यपाल ने वीर सैनिकों और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज खरसावां थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली, विधि व्यवस्था एवं पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डुरंड कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच शाम 5 बजे से जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। इसे लेकर स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंचवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे गायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
2: वाह वाह,
1: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
2: जी जी।
1: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है, तो हमने वैसे निमंत्रण छापे उनको बेचे। और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट ये गुना तो था ही। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फला दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट विच इज सो सैड।
2: जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
1: जरूर जरूर।
3: दीवाना।
4: एक दीवाना शहर में।
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
4: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्भार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात यह कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी किया था उसको लेके?
1: नहीं, टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया, हाँ। और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का, मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। और जब वो अपना शांत हो जाता था, 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल,
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया मराठी नाटक पंजाबी में होने लगा। यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में।

0: ये सही ढंग से याद नहीं आता,
1: जहां
0: लेकिन
1: तक मुझे याद है
0: फिर
1: आप आकाशवाणी भवन गई थी।
0: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
1: जी
0: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
1: डिक्शन, जी
0: हाँ
1: जी
0: डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
1: बड़े दिग्गज लोग।
0: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
1: ओहो
0: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
1: श्याम
0: था
1: बेनेगल
0: श्याम
1: के
0: बेनेगल
1: एक्टर,
0: की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
1: दस्तक
0: की
1: फिल्म
0: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी,
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
1: उनको लेके
0: भोजपुरी
1: एक फिल्म
0: सिनेमा का
1: लॉन्च हुई थी संगत,
0: किसकी,
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका
1: थे
0: हीरो था
1: जी,
0: हाँ राकेश,
1: बाद में
0: वेरी
1: वासुदा ने
0: वेरी
1: एक
0: नाइस
1: फिल्म
0: फिल्म।
1: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
0: अच्छा
1: वो हीरो थे पर वो बनी
0: वो
1: नहीं।
0: नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
1: स्टार बन
0: बच्चन
1: गए
0: है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, अभी मोटे वोटे हुए थे तब,
1: जी
0: दुबला
1: जी
0: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया
1: शैलेंद्र
0: बहुत
1: सिंह
0: मजा
1: वगैरह
0: आया।
1: भी थे।
0: नहीं, मेरे
1: अच्छा
0: क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे, तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देश पांडे,
1: वाह वाह
0: हाँ
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली ये, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि पूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया, और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है,
0: कि
1: ये
0: हाँ
1: ख्वाब भी नहीं था
0: ख्वाब
1: कि
0: भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह
0: हाँ
1: जिंदगी ले
0: ये
1: जाने वाली
0: मेरी
1: है।
0: कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए,
1: जी
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे भारत के, पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या
0: कहने कह
1: शानदार बात है,
0: हाँ
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: नाज के साथ मैं कहती हूँ, और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
1: पी
0: कुमार
1: कुमार
0: वासुदेव,
1: वासुदेव
0: पी
1: जी,
0: कुमार वासुदेव जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी,
1: ओहो
0: और हबीब तनवीर थे,
1: क्या बात
0: हाँ
1: है, वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह,
0: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, So, which is wonderful. I'm very proud of that. And so it was fabulous. 8 magic years in television. और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है जो मर्जी करो क्योंकि there was no example, you know, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो

0: अंगूठी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी। चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
1: बिल्कुल
0: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था। और इट वाज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वाज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी
0: हाँ,
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी।
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सका, पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्छे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए, तो क्या बात करें वो लोग, और जा, मतलब पूरी दिल्ली की स्काई लाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई, हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात
0: तुम
1: है
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी, हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी,
1: वाह
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा, कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी, दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो, क्योंकि
0: वो
1: अब तो
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: हैं
0: गई।
1: ना। एम एफ हुसैन मिले थे
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक
1: जी
0: यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो,
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा, अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है, मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था,
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसे आया था और ये

0: कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको तोलो तो ये नाराज वाला जो मामला था
1: नहीं, वो कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम बड़े चाव से। तो ये
0: आइडिया कहाँ से?
1: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को।
0: हाँ,
1: तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज पलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर करके पुकारते थे
0: और खरजदार आवाज।
1: हाँ बिल्कुल, माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवारे, और मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ उन्होंने कहा ऐसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक, वो उन्होंने किससे सुनाया ये कर, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है, समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
0: जी जी
1: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं, पंकज से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
0: कैसे
1: मैंने कहा नहीं नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की।
0: एक और शख्स को
1: हेमंत कुमार, बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
0: ओहो हो हो,
1: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई आई बहार,
0: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है, 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म है, आई बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे, ये गाना सुनते हैं।
1: अरे है आपके पास,
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल।
1: बात है

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू।
1: आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। इन फैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, इन द फिल्म। सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देयर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
0: बायोग्राफिकल
1: फिल्म नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहने वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस। लोग मानने को तैयार ही नहीं है, दे आर कन्विंस्ड कि नहीं ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।

0: पर अब
1: जाकी साहब को कैसे राजी किया?
0: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had four music directors.
1: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
0: या, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग भाई ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राज कमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका,
1: जी
0: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड, तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक, एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theater to show any film because they have not paid their dues. So, Saaz didn't have a theater.
1: अरे अरे अरे.
0: Television पे दिखाई.
1: जी जी जी.
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. So, bad luck all the way. So, it's not been a, जो एक happy ये होता है ना, experience. So, unfortunately, Saaz was not a happy experience for me.
1: जी. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो है उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
0: हूँ। अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी, तो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही, फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में, मतलब रह भी चुका था आके, मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था, हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि ये शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहाँ ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे पांच छह दफे हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही, और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है, और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे, वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी, तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है? वो हवा में नहीं लिखा जाता, लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है, वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते, तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको, वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी।

0: ऋषभ तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई है। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही। फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बासु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बासु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुमके प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो कुछ भी मेरा चल रहा हो काम मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बासु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव्ड द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना'स नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेक अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर तो, नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स پڑھا ہو یا کچھ جانکاری جنہیں ہو لٹریچر کے بارے میں، ایسے کم ہی نظر آتے ہیں لوگ، لیکن نصیر ایسا تھا۔

0: जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटेस्टिक थी, और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है, नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब, एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो
1: यही
0: चैप्टर
1: बात।
0: स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी, तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मेरे
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे।
0: एंड देन वन डे, लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकिस।
0: बारकिस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पिगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बारकेस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बारकेस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: मतलब बारकेस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए, और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बारकेस इज विलिंग,
1: वाओ।
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बारकिस क्या बला है क्या है
1: हाँ
0: हाँ। तो
1: हाँ
0: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है, उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए, और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ है, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं, इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता, बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत कर

0: ऐसा नहीं, नहीं हो गया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूं, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर
1: नेशनल
0: अवार्ड,
1: अवार्ड।
0: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला, देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो डाली। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, बोलते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: हो
0: बट दैट वाज अ वेरी
1: जिंदगी
0: स्वीटी।
1: की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है, का
0: जब
1: कोई
0: बताइए
1: मुकाबला
0: जरा
1: नहीं।
0: कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड्स मिले थे।
0: जी, एक पटकथा के लिए, मेरी मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहां बाशु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था,
1: जी
0: बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बाशु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बाशु के लिए।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बाशु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बाशु बात कर रहे थे और मैं आई वेड गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वॉज इन्वाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से, कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव।
0: गलत है कि स्टार हो तो, इसलिए बाशु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई, अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बाशुज। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बाशु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बाशु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बाशु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: लेकिन ये मजेदार बात है ये।
0: सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही
1: जी
0: बाशु का।
1: यहां मुझे लगता है तो
0: हाँ
1: अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ अरे वो तो गाना
1: मेरी
0: बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी जान,
1: जान मुझे
0: हाँ
1: जान कहो,
0: क्या
1: गीता रॉय
0: बात
1: की
0: है,
1: आवाज।
0: कनू रॉय,
1: हाँ
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है,
1: जी
0: प्लीज
1: जी
0: जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। श्री जोशी ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन का आकलन करने को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज खूंटी जिले के तोरपा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची में डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अब से थोड़ी देर बाद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार जोहार। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बरसात में साफ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और इस समय अपना कार्यक्रम बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सतत भविष्य की आधारशिला है। यदि हम सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाएं तो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास तीनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा कि सौर ऊर्जा प्राप्त होने वाली एक स्वच्छ, नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। इससे बढ़ती ऊर्जा की मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच आज सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे विश्वसनीय ऊर्जा मानी जा रही है। दोस्तों, सौर ऊर्जा के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि सौर कोयला, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता जो है वो कम करती है। सौर ऊर्जा बिजली के खर्च में कमी लाती है और कार्बन उत्सर्जन इसको घटाकर पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। साथ ही ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने में उपयोगी होती है। साथ ही सौर ऊर्जा रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देती है। तो इतने सारे फायदे हैं सौर ऊर्जा के, इसलिए हमें सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाना चाहिए। इससे सौर संरक्षण और सतत विकास तीनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं हम। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना था। हम समझते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद आप लोगों की दिन भर की शारीरिक और मानसिक थकावट है ना, वो दूर हो गई होगी। और अब चलिए हम आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता स्वच्छ भारत मिशन पर। ये भेंट वार्ता ली गई है, जानकारी दे रहे हैं राजकुमार जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा।
1: सफलता के लिए बहुत सी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा, विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी और सरकार को हर स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जन सुविधाएं स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, या महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का समय है। तभी हम खुले में शौच करने की शर्मिंदगी से मुक्त होकर भारत को सही अर्थ में स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के राम कुमार जी, जो कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक हैं। तो राम कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये योजना क्या है?
2: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। एक ऐसी कुप्रथा जो वर्षों से चली आ रही है, जिससे हमारा जीवन स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। ग्रामीण परिवेश का जीवन स्तर में हम मूल चूल सुधार, आवश्यक सुधार जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवेश को सदा के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा है।
1: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये कब लागू किया गया और इसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं आप?
2: ऐसे योजना हमारी विभिन्न नामों से 1996 से चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसका मूल उद्देश्य था सिर्फ शौचालय निर्माण न करके ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीण परिवेश को एक स्वच्छ एनवायरमेंट दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार प्राप्त किया जा सके।
1: इसमें कैसे लाभुकों को शामिल करते हैं और कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका क्या तरीका है?
2: इसके तहत 12,000 की प्रोत्साहन राशि ऐसे लाभुक जो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसे हम सीमांत

0: किसान और लघु किसान कहते हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, जो भूमिहर मजदूर हैं, दूसरे से जगह से वासित हैं उस गांव में, सभी वो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और विधवा परिवार जो विमेन हेडेड फैमिली है
1: जी।
0: ये सभी लोग इस लाभुक की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। इस बेसलाइन 2012 के अनुसार ही ऐसे लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है
1: जी। खुले में मल त्याग खासकर महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली आघात है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई केवल स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि यह जीवन जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो आप बताएं कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन कैसे करते हैं और लाभुक को लाभ कैसे पहुंचता है
0: जी। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रखंडों को, पंचायतों को चयन करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा ये चयन होके आता है, जो मुखिया काफी एक्टिव होते हैं, जहां के ग्रामीण काफी एक्टिव होते हैं, उनको प्रायोरिटी में चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 15-16 में इस जिले के सभी 16 प्रखंड पंचायतों का चयन इस हेतु किया गया था, ODF हेतु लक्षित किया गया था। इसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा और ग्रामीणों के सकारात्मक पहल के कारण चमकता चुरचू अभियान चुरचू प्रखंड को ODF करने का कार्यक्रम चलाया गया। विगत 2 माह से निरंतर प्रयास करके लगभग शौचालय निर्माण का कार्य सभी चिन्हित लाभुकों के लिए चमकता चुरचू अभियान के तहत चुरचू में करा लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यही है कि हम लोग पहले जो चिन्हित लाभुक हैं उनके अनुसार ग्राम जल स्वच्छता समिति को 12,000 की राशि उपलब्ध करा देते हैं और उस 12,000 राशि को उपलब्ध कराने के बाद ग्राम सभा के द्वारा बैठक की जाती है कि ऐसे लाभुक जो अपना शौचालय स्वयं बनाना चाहते हैं, बनाने को इच्छुक हैं, जो चिन्हित परिवार में आते हैं, जो बेसलाइन सर्वे में जिनका नाम है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना शौचालय बनवा लो और जो पहले शौचालय बनाएगा उससे पहले उसकी राशि उपलब्ध होगी। तो पहले आओ पहले पाओ का ये एक रेस टाइप का, एक कॉम्पिटिशन टाइप का लोगों में किया जाता है, ताकि एक देखा सीखी लोग सीख सकें और अपना अपना शौचालय बना सकें। जहां तक देखा गया शौचालय की मांग बहुत देखी जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा शौचालय बने, लेकिन शौचालय के उपयोग की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा आनाकानी की भावना आ जाती है। तो शौचालय निर्माण में एक पद्धति यह है कि हम ग्रामीणों को, ग्राम जल स्वच्छता समिति को राशि उपलब्ध कराते हैं, वहां से जब सभी लोग शौचालय अपना बना लेते हैं, सरकारी प्रक्रिया के तहत जांच हो जाती है, मुखिया सत्यापित करते हैं कि भाई शौचालय इनका बन गया और इसकी लागत कम से कम 12,000 है। हमारे कन्या अभियंता भी इसका 100% सत्यापन करते हैं। उसका फोटोग्राफ होने के बाद 12,000 की राशि कोई समारोह आयोजित करके माननीय चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाभुकों को उपलब्ध करा दी जाती है।
1: तो क्या वे अपने जमीन में करते हैं या तो?
0: नहीं, शौचालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे की जानी चाहिए और वही हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अगर वो दूसरे की जमीन पे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे अक्वायर कर लेगा तो दिक्कत होगी उनके लिए। तो बेहतर यही होता है कि अपने जमीन पे ही लोग बनाएं और अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है कि लोग अपनी जमीन का ही उपयोग अपना शौचालय बनाने के लिए करते हैं।
1: खुले में शौच करने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है और इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा?
0: एक बार शौचालय बनने के बाद लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि भाई ये शौचालय क्यों बनाया गया, उनको ये बात समझाने की जरूरत पड़ती है। कई बैठकें आयोजित की जाती है, बैठकों में हम चर्चा करते हैं कि अगर आप खुले में शौच को जाते हैं तो इस खुले में शौच जाने की वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं उनका हाइट हम लोग देख रहे लगातार गिरता चला जा रहा है
1: जी।
0: तो अभी एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, WHO का सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लड़कियों का कद कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये खुले में शौच जाना। इसमें जो कृमि है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे खाने तक, हमारे मल जो है मुख तक आता है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। दूसरी बात, बरसात के दिनों में अगर हम देखते हैं तो खुले में शौच जाने से जो शौच का जगह होता है वहां से जो गंदगी है वो शौच किसी न किसी रूप में हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है और उससे बुरी तरह से दूषित करता है, प्रभावित करता है। अब उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से हम न सिर्फ बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चर्चा लोगों में की जाती है तो उनको एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है कि आपके इस गलत बिहेवियर के चलते, गलत आदतों के चलते ये असर पड़ रहा है, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक शौचालय जो बनाया गया है जिसका नियमित इस्तेमाल करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है और मल से मुख तक का एक बैरियर को क्रिएट करने का कार्य इस शौचालय के द्वारा किया जाता है, जिससे मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके।
1: शौचालय बनाने के बाद रख रखाव में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता जहां होगा वहां रोग या बीमारी का प्रभाव वहां पे कम पड़ेगा।
0: देखिए शौचालय अगर मेरा है

0: समाज में छोटे परिवार बड़े परिवार दोनों ही रहते हैं, और खासकर देखा जाता है कि अगर शौचालय बन गया मेरा तैयार हो गया, जहां आत्मसम्मान की बात आती है, तो वहां क्या करते हैं कि दो या तीन परिवार तो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए ताकि वे अपने शौचालय का उपयोग करेंगे और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को वे मतलब इस गंदगी से दूर रखेंगे?
1: देखिए, खुले में शौच मुक्त की मूल भावना यही है कि उस ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं सभी शौचालय का नियमित उपयोग करें।
0: जी,
1: कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए ना जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या जवान हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो। तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा गांव, पूरा हमारा समाज, पूरा प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को इस शौचालय की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है, क्योंकि अगर उन्हें शौच आता है तो या तो वह रात होने का इंतजार, अंधेरा होने का इंतजार करती है, या सुबह सूर्य उगने से पहले जाती है। अगर बीच दौरान में कभी उनकी तबियत खराब हो गई, कुछ हो गई, तो उनके लिए बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है कि भाई वो शौच के लिए कैसे जाएं। ऐसे में उनको पेट दर्द और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक ऐसे साधन है, अगर महिलाओं को हम तरीके से सेंसिटाइज कर लें तो वो एक इसे आंदोलन का रूप दे सकती हैं। और जो हमारे लोकल महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, जल सहिया होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसमें सेविका सहायिका होती है, इन सबके ग्रुप के द्वारा महिलाओं को, व्यक्तियों को, बच्चियों को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाते हुए शौचालयों का नियमित उपयोग करें, जिससे कि किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में न करना पड़े। क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें रात में सांप का डर है, बरसात में गिरने का डर है, और अगर छेड़खानी वगैरह हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है,
0: और गांव में जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारे जल स्रोत हैं,
1: और सबसे बड़ी बात दूषित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके और हर व्यक्ति खुले में शौच जाना हमेशा के लिए बंद कर दे।
0: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में आप कैसे कैसे प्रतिनिधियों को आप सचेत किए हैं या तो इससे जोड़ के रखे हैं, ताकि ये जो कार्य है आपका सफल हो और हमारा समाज, हमारा गांव इस जो खुले में शौच से मुक्त हो।
1: इस कार्यक्रम को गांवों तक ले जाने के लिए, वहां के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक बहुत सशक्त संस्था है, वो ग्राम जल स्वच्छता समिति है। ये संस्था अन्य संस्थाओं जैसे VHND की संस्था है, आपके विद्यालय की समिति, विद्यालय समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसके अलावा आंगनवाड़ी की जो समिति है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित कर बैठकों को, नियमित बैठकों को आयोजित करते हैं, क्योंकि और इसके बारे में इसकी सभी जानकारी लोगों को देते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप खुले में शौच ना जाएं, अगर खुले में शौच जाते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, और एक व्यवस्था, एक सुविधा जो सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है उसका नियमित उपयोग करें तो आपके जीवन स्तर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक स्थिति में काफी अपेक्षित सुधार पाया जा सकता है,
0: बदलाव हो सकता है।
1: हमारे यहाँ से ये इस वित्तीय वर्ष के पूर्व तक, मतलब ये अभी हम लोग 16-17 में आ गए, 15-16 तक जितने हमारे विद्यालय थे उनको शौचालयों से आच्छादित किया जाना था। उसके बाद कुछ कॉरपोरेट के सहयोग से, जैसे हमारे NTPC है, CCL है, और कुछ हम लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा, जिला जल स्वच्छता मिशन प्रकल्प के द्वारा, ऐसे सभी विद्यालय जो शौचालय की सुविधा से विहीन थे उन सबों को शौचालय के निर्माण से आच्छादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। कुछ 80 या 81 शौचालयों की सूची अभी प्राप्त हुई है, जो सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद अभी हमारे स्कीम में जो इस वित्तीय वर्ष से किसी भी संस्थागत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाना है, क्योंकि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उसे प्राप्त किया जा चुका है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ही योजना का दोहरीकरण करते हैं बार बार, जिससे पैसा का अनावश्यक दुरुपयोग होगा, अनावश्यक उसका व्यय होगा।
0: ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का निर्धारित लक्ष्य क्या है?
1: जी, हमारा जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का 18,108 शौचालय बनाए जाने थे, इसके विरुद्ध हम लोगों ने 20,373 शौचालयों का निर्माण
0: हो चुका है,
1: जी किया है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे हजारीबाग जिले को ODF खुले में शौच मुक्त के लिए लक्षित किया गया है, और हम लोगों का प्रयास होगा, हम सभी माननीय, हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी माननीय विधायकगण, सांसदगण हैं, हमारे जितने भी नेचुरल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें, ग्रामीणों से चर्चा करें और ये प्रयास करें कि भाई वो अपना शौचालय बनाएं और ये प्रोत्साहन की राशि सीधे अपने खाते में पाएं। जिससे कि शौचालय का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और इससे न सिर्फ वो बल्कि अपने समाज को भी लाभान्वित कर सके।

0: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिए आप अंत में क्या कहना चाहेंगे ताकि वे जागरूक हों और अपने इस कार्यक्रम से जुड़े और लाभ ले सकें।
1: खुले में शौच जाना एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, और इस प्रथा को अगर हम डंटा घुमा के या छड़ी घुमा के चाह ले कि हम लोगों के एक आदत को, एक व्यवहार को जो काफी जमाने से चली आ रही है बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हर आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें 100% होना शुरू हो जाए
0: जी।
1: तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्कूल इज अ गेटवे टू सैनिटेशन, बच्चों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें सेंसिटाइज करके, प्रेरित करके अगर हम आगे बढ़े, हमारे जितने भी नए चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं जो काफी सकारात्मक रूप से इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं और लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका ये इंथुजियाज्म, उनका ये ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही जो दिखती है, अगर इसी तरह से सकारात्मक रूप से नियमित वो बैठ के करें और लोगों के बीच इस चीज को प्रचारित करें कि भाई हर चीज हमारे पास है, फिर हम शौचालय के लिए सरकारी राशि का ही मुंह क्यों ताकते रहें, हम बना लें इसको, इससे सुविधा तो हमें मिलनी है, सरकार को तो कोई सुविधा मिलनी नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, हमारा अनावश्यक व्यय कम हो जाएगा, हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे खाना खा सकते हैं। तो हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना उचित नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसका सही तरीके से समुचित उपयोग तभी होगा जब हर व्यक्ति ओनरशिप लेगा कि भाई ये हमारी चीज है, ये जो बन रहा है ये हम अपना बना रहे हैं, इस उद्देश्य से बना रहे हैं। और ऐसा बनाने के बाद हम कई कुप्रथाओं से निजात पा सकते हैं, कई दुर्घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं, और कुल मिला के स्वच्छ भारत मिशन के जो मूल भावना है, खुले में शौचमुक्त करना, खुले में शौचमुक्त हजारीबाग, खुले में शौचमुक्त झारखंड और खुले में शौचमुक्त भारत की जो अवधारणा को हम लोग पूरा कर सकते हैं।
0: हम लोगों को यही मानना होगा कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यही सही समय और अवसर है। जब स्वच्छता संबंधी बातें आदतों में शामिल हो जाएगी तो बदलाव भी खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी अनेक जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, स्वच्छ भारत मिशन पर ली गई थी। जानकारी दे रहे थे राम कुमार जी और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। और अब लीजिए, सुनिए ये गाना।

और अब इसी गाने के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अपने इस कार्यक्रम से श्वेता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम युवा तरंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये इयर रिंग दिखाना
1: गया तेरा प्राइस मनी।
2: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
3: आते समय कर लिया मोबाइल से।
2: कहाँ?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
2: हाँ,
3: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स,
2: नो ब्रोकरेज,
4: नो हिडन फीस।
2: मान गए, आपको नहीं।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को श्वेता श्रीवास्तव का नमस्कार जोहार। दोस्तों, आज है मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई। यह दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है ताकि लोगों को मैंग्रोव वनों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और इनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। इसको मनाने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मैंग्रोव वनों को कटाई और प्रदूषण से बचाना चाहिए, तटीय क्षेत्रों को चक्रवात, सुनामी और समुद्री कटाव से सुरक्षित रखना, समुद्री जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए मैंग्रोव वनों के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं। सरकारों, संस्थाओं और आम नागरिकों को मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, यह दिवस जो है वो हमें यह संदेश देता है कि मैंग्रोव वन प्रकृति की सुरक्षा कवच है। इसका संरक्षण करना पर्यावरण, समुद्री जीवन और मानव समाज के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए, बातें आज इस विषय पे और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

हम लोग बातें कर रहे थे आज मैंग्रोव दिवस के बारे में दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि क्या कहते हैं, आप में से बहुत लोगों को तो पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता है उसके विषय में उन्हें हम बता दें कि ये वन जो होते हैं एक विशेष प्रकार के वन होते हैं जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों, नदी के मुहानों और खारे या खारे मीठे मिश्रित पानी वाले दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इन पेड़ों में खारे पानी को सहन करने की विशेष क्षमता होती है और इनकी जड़ें अक्सर जमीन के ऊपर दिखाई देती है जिससे इन्हें दलदली मिट्टी में सांस लेने और मजबूती से टिके रहने में मदद मिलती है। मैंग्रोव वनों का बहुत महत्व होता है। हमने शुरू में भी आपको बताया था कि समुद्री तूफान, चक्रवात और सुनामी के प्रभाव को कम करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाते हैं। मछलियों, केकड़ों, पंछियों और समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास है। ये कार्बन को बड़ी मात्रा में संग्रहित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इस तरह इनका बहुत महत्व है। और चलिए हम आपको सुनवाते हैं अब एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता है आकाश, ये थर्मल बिजली कैसे एनर्जी कैसे पैदा की जा सकती है, थर्मल एनर्जी कैसे पैदा की जा सकती है, इस विषय पर आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं श्री ज्ञानचंद प्रसाद और इनसे बातचीत कर रहे हैं विश्वनाथ सोनी।

0: श्रोताओ, हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आईटीआई हजारीबाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री ज्ञानचंद प्रसाद मेहता जी। इनसे बातचीत करेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में कि कैसे थर्मल एनर्जी पैदा की जाती है और इस थर्मल एनर्जी का हम उपयोग किस रूप में रोजाना के जीवन में करते हैं, तो हम इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानचंद प्रसाद जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत।
1: नमस्कार।
0: जैसा कि आज का टॉपिक है कि थर्मल एनर्जी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या है और हम इसके किस रूप में इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें समझता हूँ।
1: एनर्जी प्राकृतिक रूप से भी है हमारे पृथ्वी पर, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ताप ऊर्जा इत्यादि, और इन्हीं में से आपने थर्मल एनर्जी की बात कही है। तो ये ताप ऊर्जा से जब किसी वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसके गर्म करने के बाद एक एनर्जी प्राप्त होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उस ऊर्जा को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे आप गैस के चूल्हे पर किसी बर्तन में, मेटल के बर्तन है, उसमें जल रख करके आप उसको गर्म करते हैं, उसको गर्म करने के क्रम में देखते हैं कि पहले बर्तन गर्म होता है, फिर जल गर्म होता है, यहां तक तो बात है कि गर्म से गर्म हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो पानी उबलने लगता है। तो उबलते हुए पानी से जब भाप निकलना शुरू हो जाता है तो एक वो भाप ऊपर की ओर जाता है, तो उस वो दबाव डालता है, तो इसके लिए भाप वो निकलने वाले बर्तन को हम ढक देते हैं, और उस समय उस बर्तन में यदि चावल छोड़ दें या दाल छोड़ दें तो देखते हैं ढक्कन दाब करके थोड़ी देर में वो पक जाता है। यह पकना उसका एक ऊर्जा के कारण हुआ, वह ऊर्जा यह थी कि दाब ऊर्जा जो उसको पड़ा, दब प्रेशर जो पड़ा, इसके वजह से अनाज पक गया। तो यह जो दबाव कैसे पड़ा, तो यह थर्मल ऊर्जा था जिसके वजह से इसका ठीक, यदि हम और इसका अच्छा उपयोग करना चाहें थर्मल ऊर्जा का, प्रेशर कुकर में करते हैं कि बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, उस प्रेशर ऊर्जा जो ये प्रेशर है वो अंदर अनाज को सिझा देता है और बाकी बड़ा फोर्स के साथ उसके सीटी से निकलता एक आवाज होता है। इसी प्रकार से स्टीम जो बना, ये थर्मल ऊर्जा से बना स्टीम, और इसको हम मैकेनिकल ऊर्जा में रूपांतरित करके हम मैकेनिकल ऊर्जा का

0: उपयोग करते हैं जब हम रेल का इंजन चलाते हैं, कोयला जला करके भाप बनाते हैं, पावर स्टेशन बनता है जिससे बिजली मिलती है। दैनंदिन जीवन में इसके अनेक उदाहरण है, भोजन बनाने से लेकर के वायुयान चलाने।
1: तो हमारे दैनिक जीवन में इस थर्मल एनर्जी का काफी उपयोग है, काफी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एनर्जी को हम कैसे बिजली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में आप हमें श्रोताओं को बताएं।
0: बिजली का उत्पादन तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका, थर्मल एनर्जी का, और यह व्यापक है इसकी, और बताने में भी मुझे खुशी है इस विषय की चर्चा करने में। वास्तव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी हमको चाहिए, तो उस मैकेनिकल एनर्जी के लिए कोयले को जलाया जाता है। कोयला जलाने के लिए जहां भी थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे निकट में आपके पतरातू में थर्मल पावर स्टेशन है, तो वो पतरातू में जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां पर रेलवे का वो कोल शेडिंग है, वो बढ़िया बढ़िया कोयला आता है और उस कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाने के लिए पहले उनको क्रशर मिल में ले जाते हैं और क्रश करते हैं, फिर क्रश करने के बाद उसको पाउडर के शेप में बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है, और तब ये भट्टी फर्नेस में जाता है। फर्नेस के ऊपर बॉयलर लगा हुआ होता है जिसमें जल होता है और ट्रीटमेंट किया हुआ पानी होता है, साधारण पानी नहीं रहता है। और वह पानी कहां से आता है, अभी तो हम फर्नेस में है, फर्नेस में कोयला जलाएंगे, लेकिन जो फर्नेस में है ये बॉयलर में पानी कहां से आता है, तो इसके लिए रिजर्वायर रहता है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होता है जल को भंडारण करने का, पतरातू में है, पतरातू डैम है, वहां से लेकर के पानी एक और रिजर्वायर बनाते हैं बिजली वाले कि ताकि उसका लेवल, डैम का लेवल का पानी तो कम बहता रहेगा, और उस पानी को लेकर के पाइप के जरिए यह पानी जब जाता है बॉयलर में तो पाइप के अंदर जाता है और छोटे छोटे पाइप से वो लटका होता है कि ताकि जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए, और उस प्रकार से जब वो गर्म किया जाता है पाइप, तो पाइप काफी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने के वजह से उस पाइप को जो इससे वाष्प निकलता है, और उस वाष्प को, निकले हुए वाष्प को, यहाँ पर एक बात कह देना चाहें किसी को यदि यहाँ दिक्कत न हो, कि जो बॉयलर में पानी जाता है, एक शब्द हम बोला था कि पानी का ट्रीटमेंट कर देना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डी मिनरलाइज, उसमें मिनरल रहता है वाटर में, आयरन है, सोडियम है, और इस प्रकार से जिंक है, कई चीजें रह सकती है, उन मिनरल्स को अलग कर दिया जाता है, नहीं अलग किया जाएगा तो उनको गर्म करके भाप बनाने में टेम्परेचर भी बहुत लगेगा जिसमें ज्यादा कोयला बर्न होगा, और दूसरी बात है कि ऐसे ठोस चीज बन जाएंगे तो जो पाइप है बॉयलर के अंदर जो बना है उसमें वो जाम कर जाएगा, इसलिए वो इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते। अब जो निकला भाप है उस भाप को एक विधि संगत तरीके से टरबाइन के ब्लेड में ले जाते हैं। टरबाइन क्या है कि टरबाइन के शाफ्ट से जुड़ा हुआ अल्टरनेटर, बिजली का बहुत बड़ा अल्टरनेटर, ये छोटा नहीं, जनरेटर देखते हैं हम शादी ब्याह में, ये आजकल तो साइलेंट जनरेटर भी आ गया है, तो ऐसे भी ये भी इन लोग भी थर्मल ऊर्जा से ही चलता है, यहाँ पर कोयला का न उपयोग करके डीजल को जला करके करते हैं, तापीय ऊर्जा को ही थर्मल ऊर्जा में बदलते हैं। और वहां जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार के भाप को जब टरबाइन के ब्लेड पर देते हैं तो टरबाइन घूमता है प्रेशर से, जैसे कि हमने देखा छोटी सी बात कि एक प्रेशर कुकर के ऊपर लगा हुआ बल्ब जो है कैसे उछल जाता है, या कभी कभी गलत वो नहीं उछला, उसका छेद ठीक नहीं है तो ऊपर का ढक्कन फाड़ करके छत से टकरा जाता है, इतनी ताकत होती है। तो उन ताकत को टरबाइन ब्लेड पर जब दिया जाता है बड़े पैमाने पर तो वो बहुत तेजी से घूमता है, कम से कम 3400 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट में, और उससे जुड़ा एक शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट कपलिंग किया होता है अल्टरनेटर के शाफ्ट से, और अल्टरनेटर का शाफ्ट जब घूमता है तेजी से तो अल्टरनेटर में वो क्वाइल बंधा हुआ होता है, ये एक तरीका है, और वो अल्टरनेटर में उसको रोटर कहते हैं उस क्वाइल को, और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवाने के लिए मैग्नेट होते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है, और उसको स्टेटर कहते हैं, और इस प्रकार से फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियमानुसार जब कोई क्वाइल को घुमाया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस क्वाइल में करंट उत्पन्न होता है, इस प्रकार से भारी मात्रा में वो करंट उत्पन्न होता है, उस करंट को कनेक्ट करके बाहर ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है, ताकि इसके उस वक्त में किसी भी पावर स्टेशन में जो जिस वोल्टेज पर हमको बनाना है

0: बिल्डअप करता है वो वोल्टेज काफी कम रखा जाता है। अधिक वोल्टेज रखने से ये सारा ये संयंत्र का खर्चा बढ़ जाएगा, तो 11,000 वोल्ट से ही बिजली उत्पन्न होती है पावर स्टेशन पर, और उसको फिर 11,000 वोल्ट को हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं फील्ड में, क्योंकि उसको भेजने के लिए करंट का मान बढ़ जाएगा लोड बढ़ने से, तो उसके लिए बड़ी मोटी मोटी तारें चाहिए, इसलिए वो किफायती हो, इकोनॉमिकल हो, इसके वजह से उस वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से 2,32,000 इसमें से स्टेप अप किया जाता है, और इस वोल्टेज का जब मान बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली करंट का मान कम हो जाता है, और कम करंट के मान को हम अपेक्षाकृत पतले कंडक्टरों के माध्यम से, जिसे टावर आप देखते हैं, टावर ये ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं इसको, तो ट्रांसमिशन का फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन जो टावर से चलता है, और ये आता है जहां किसी शहर के पहुंचने के पहले ग्रिड स्टेशन होता है, तो घनी आबादी के पहुंचने के पहले ही ग्रिड स्टेशन बनता है। अब तो हर जगह की आबादी बढ़ गई है, तो कैसे क्या किया जाए, पहले देख आप भी गौर कीजिएगा कि किसी भी शहर के बाहर ये चीज होता था, यहां हजारीबाग शहर की बात करिए तो सिंदूर में वो ग्रिड सब स्टेशन है, और वहां पर इसको स्टेप डाउन करते हैं, 33,000 को एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11,000 में बदल देते हैं, और यहां से भी किसी को डायरेक्ट हम सप्लाई नहीं देते, 11,000 को भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के माध्यम से हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, 11,000 तक हर मोहल्ले के चौक चौराहे पर या गांव के खेतों में गांवों में ट्रांसफार्मर होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइमरी फेज है, और सेकेंडरी फेज है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लग जाने से 440 का वोल्टेज जाता है। हाँ, ये किसी भी चीज के लिए उपयोगी है, थ्री फेज की मोटर चलाने के लिए, सिंचाई के लिए, और घर के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल से हम 220 का वोल्टेज पाते हैं। इस प्रकार से बिजली हमको थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से, आपने देखा कि किस तरह से कोयले को जला करके जल को भाप बनाया, भाप को टरबाइन ब्लेड पर चलाया, टरबाइन ब्लेड के चलने से वो अल्टरनेटर चला, और अल्टरनेटर के चलने से वहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर कटा, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ को हम कम वोल्टेज में वहां प्राप्त किए, उस वोल्टेज को ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा बढ़ा दिया।
1: यानी कि इतनी जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है और हमारे घरों तक यह बिजली पहुंच पाती है। तो आप हमारे जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम के जो सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजली किस रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि काफी हमारे जगहों पे बिजली की क्राइसिस है, बिजली लोगों को मिल नहीं पाता, तो ऐसे में उनका बिजली का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, एक सभ्य नागरिक के लिए आवश्यक है कि जितना भी ये सब सोर्सेज है, हम यदि इसका दुरुपयोग करेंगे, बिजली क्यों, सभी चीजों के प्रति ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसलिए बिजली इसलिए कि सारा कुछ इस पर आधारित है, जितने भी किस्म के व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, चिकित्सा क्षेत्र है, इसकी इसके उपयोग की व्यापकता पर ध्यान दें तो लगेगा कि विद्युत नहीं रहेगा तो सारा काम ठप रहेगा, और इस प्रकार से जो बिजली बनती है इसका दुरुपयोग कतई नहीं की जाए, अनावश्यक घरेलू बिजली में ज्यादा बिजली खपत होती है, और कारखानों में तो खैर जो सावधानी बरती जाती है बहुत हद तक, लेकिन हम बिना अर्थ का किसी भी प्रकार के हम वो बिजली चल रही है घर के अंदर, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, और सोचते हैं मन में कि हमको बिजली बिल ही देना है ना, बिजली बिल दे देंगे, बिजली बिल देने से ये चुकता नहीं होगा। आज भी सब्सिडी बिजली वाली गवर्नमेंट देती है बिजली कंपनी को, तब कहीं चुकता होता है, यदि ऐसा ख्याल है तो वो बिजली बहुत महंगी आती है।
1: तो कहीं ना कहीं हम अत्यधिक बिजली का उपयोग करते हुए किसी सुदूरवर्ती गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके बिजली की जो जरूरतें हैं उनको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे कहा उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे श्रोता, उम्मीद करेंगे कि बिजली आप जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, और जो बिजली बनने की जो जटिल प्रक्रिया है आपने काफी अच्छे से जाना, और उम्मीद करते हैं कि इसका एक सदुपयोग करेंगे और इस प्रक्रिया से आप भी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, थर्मल एनर्जी कैसे पैदा की जाती है, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री ज्ञानचंद प्रसाद जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे विश्वनाथ सोनी। दोस्तों, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जितना

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला चरम पर है। इस बीच केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र आज वीर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह आज गुड्डा जिले में बीएलए के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने पर विशेष बल दिया। राज्य के कई जिलों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची के डुरंड कप टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट का आज रंगारंग आरंभ हुआ। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होंगे। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेहनत कश।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेहनतकश। मैं हूं आपकी दोस्त माधवी। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और कृतज्ञता का दिन है। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। यह वह ऐतिहासिक दिन है जब वर्ष 1999 में भारतीय सेना के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगा की शान को फिर से स्थापित किया। इस विजय ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए हर चुनौती का डटकर सामना करना जानता है। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का युद्ध नहीं था, बल्कि यह देश

भक्ति कर्तव्य निष्ठा और त्याग का अनुपम उदाहरण भी था। कठिन मौसम, बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां और विषम परिस्थितियां भी हमारे वीर सैनिकों के हौसलों को डिगा नहीं सकी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को सुरक्षित भविष्य का विश्वास दिया। आज हम उन अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनके बलिदान के कारण हम स्वतंत्र भारत में चैन और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। उनकी वीरता की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। आज हम देश के उन कर्मयोगियों को भी सलाम करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। चाहे वह खेतों में अन्न उगाने वाला किसान हो, कारखानों में कार्यरत श्रमिक हो, निर्माण कार्य में जुटे मजदूर या फिर सीमाओं पर तैनात हमारे जवान, हर मेहनतकश भारत की शक्ति है। इसी भावना के साथ हम सभी वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं और भारतीय सेना के साहस, शौर्य और समर्पण को हृदय से सलाम करते हैं और सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कृषि, पेयजल और पर्यावरण के लिए लाभदायक है, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी आती हैं। भीगने से बचने और सुरक्षित रहने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के वर्षा रक्षक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे छाता, रेनकोट, गमबूट, वाटरप्रूफ बैग, तिरपाल आदि। इन उत्पादों की मांग हर वर्ष मानसून के समय बढ़ जाती है। यही मांग रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करती है। इन उत्पादों को बनाने के लिए अनेक कारखाने कार्य करते हैं। इनमें रोजगार के कई अवसर हैं। मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन ऑपरेटर, कटिंग मास्टर, पैकिंग कर्मचारी, सुपरवाइजर। आज ग्राहक आकर्षक और आधुनिक डिजाइन वाले रेनकोट और छाता पसंद करते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है फैशन डिजाइनर, उत्पाद डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, जो नए रंग, डिजाइन और गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करते हैं। निर्मित उत्पादकों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में सेल्समैन, मार्केटिंग अधिकारी, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक व्यापारी, खुदरा दुकानदार को रोजगार मिलता है। आज अधिकांश लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, इसमें भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। ई कॉमर्स मैनेजर, डिलीवरी पार्टनर, ग्राहक सेवा अधिकारी और वेयर हाउस कर्मचारी। हर कंपनी चाहती है उसका उत्पाद मजबूत और टिकाऊ हो, इसलिए गुणवत्ता जांच करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। उनका कार्य होता है कपड़े की गुणवत्ता देखना, पानी रोकने की क्षमता जांचना, सिलाई की मजबूती देखना और अंतिम निरीक्षण करना। अक्सर छाते टूट जाते हैं, उनकी मरम्मती का कार्य भी रोजगार का अच्छा साधन है। कम लागत में यह व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी पूंजी है तो वह स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकता है, जैसे कि रेनकोट की दुकान, छाते की दुकान, थोक व्यापार, फुटपाथ पर मौसमी बिक्री, ऑनलाइन बिक्री, स्थानीय स्तर पर निर्माण। यह कम लागत वाला और लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। इस क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है कि अपने कौशल को, जैसे सिलाई का ज्ञान, मशीन संचालन, उत्पाद की गुणवत्ता पहचानना, ग्राहक से अच्छा व्यवहार, विपणन कौशल, कंप्यूटर और ऑनलाइन बिक्री का ज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन और टीम वर्क। जो युवा स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण या उद्यमिता सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला उद्योग केंद्र से भी जानकारी और मार्गदर्शन लिया जा सकता है। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, पर्यावरण अनुकूल सामग्री, आधुनिक डिजाइन, ऑनलाइन बिक्री, इन सभी कारणों से इस क्षेत्र में भविष्य में भी रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। वर्षा से बचाव के उपकरण केवल हमारी सुरक्षा के साधन नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। यदि युवा सही प्रशिक्षण, कौशल और मेहनत के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो वे न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आगे हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता, उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: कहते हैं एकता में शक्ति है और संगठित प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इसी विचार को साकार करते हैं स्वयं सहायता समूह। जब महिलाएं या ग्रामीण परिवार छोटे छोटे समूह बनाकर नियमित बचत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं, तब न केवल अपनी आय बढ़ाते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनेक महिलाएं सिलाई बुनाई, डेयरी, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे उनके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा है और समाज में उनकी पहचान भी मजबूत हुई है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, बैंक ऋण और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं शांति देवी से ली गई भेंट वार्ता। विषय है SHG से जुड़कर आत्मनिर्भर होती ग्रामीण महिलाएं और भेंट करता है मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी।
6: श्रोताओ, चलने वाले निकल गए हैं, जरा जो ठहरे कुचल गए हैं। हरकत से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। हरकत कहें या मेहनत, इसका कोई बदल नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और यही वो चीजें हैं जिसकी बदौलत लोगों ने आसमान में कमंदे डाली हैं और अंतरिक्ष पर भी काबिज हुए हैं। साथ ही अपनी अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं, सफलता के झंडे गाड़े हैं। और हाँ, इस मैदान में युवा हों या युवतियां, पुरुष हो या महिला, हर एक ने अपनी अपनी पहचान बनाई है, अपनी अपनी शान बढ़ाए हैं। और सच तो ये है कि औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं, आजीविका के बेहतर साधन जुटाए हैं और स्वरोजगार की राहें हमवार की हैं, इसके मार्ग प्रशस्त किए हैं। इस दिशा में हमारी सरकारें भी कई तरह की योजनाएं चलाती रही हैं जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो, लोग आत्मनिर्भर हो सकें। यहाँ तक कि निजी संस्थाएं और संगठन सब ने अपने अपने तौर पर युवाओं को, युवतियों को, पुरुषों एवं महिलाओं को इस ओर अग्रसर करने में कोशा है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो सकें, स्वरोजगार से जुड़ सकें। और ऐसा करने में ग्रामीण महिलाएं भी स्वयं को सशक्त करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अग्रसर हैं। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ग्राम जरवा की एक महिला जो JSLPS के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित की हैं और अपनी आर्थिक स्थिति की समृद्धि के लिए अपने उज्जवल भविष्य की ओर, अपने रोशन मुस्तकबिल की ओर अग्रसर हैं। जानते हैं उनके अनुभवों को उन्हीं की जुबानी। तो पहले जानते हैं उनका नाम, क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम शांति देवी हुआ, मेरे समूह का नाम है धनलक्ष्मी महिला समूह, उसमें हम पुस्तक संचालक हैं। और मेरा ग्राम संगठन का नाम है इंदिरा आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसमें हम सक्रिय महिला के पद पर काम करते हैं, मतलब महिला समूह को हम लोग देख रेख करते हैं।
6: सक्रिय महिला आप के पद पर आप काम कर रहे हैं, महिलाओं की आप देख रेख करते हैं, किस तरह के कार्य में आप देख रेख करते हैं?
7: जैसे उसके आजीविका को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, कुछ भी फंड आता है तो उन लोग को हम लोग जानकारी देते हैं। जैसे हम लोग को सर लोग जानकारी देते हैं, हम लोग महिला के द्वारा महिला के पास में हम लोग पहुँचा देते हैं कि ये सब काम आया हुआ आप लोग करना है, तो जागरूक महिला लोग नहीं हो गया तो
8: रोजगार के संबंध में लोगों के अंदर जागरूकता लाना है और उसके अंदर ये चीज भावना भी पैदा करना है, जज्बा पैदा करना कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं।
7: हाँ,
8: तो जो आप बताई हैं कि जो योजना आता है, जो चीजें आती हैं, वो किस माध्यम से आती हैं और कौन कौन सी काम जो है वो आते हैं?
7: जैसलपीएस के द्वारा आता है, जोहार परियोजना के तरह द्वारा आता है, दीदी बाड़ी जैसे हो गया, जोहार परियोजना में भी ट्रेनिंग वगैरह होता, मशरूम का ट्रेनिंग हो गया, ये सब में हम लोग जाके मतलब ग्रुप में जाते हैं और बतलाते हैं कि दी ये सब आया हुआ है, आप लोग करने का इच्छा है तो अपना नाम दीजिए, नाम हम लिख के हम लोग भेज देते हैं।
8: मशरूम की ट्रेनिंग की बात आपने कहा तो ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, इसको ट्रेनिंग लेकर के लोग स्वरोजगार से जुड़ते हैं, इसमें मुनाफा भी करते हैं। अब दीदी भी बाड़ी आपने बताया।
7: हाँ,
8: तो ये क्या चीज़?
7: दीदी बाड़ी में होता है कि जैसे एक डिश में से 5 डिश मिल तक

0: जो सक्रिय महिला के रूप में जो आप काम कर रहे हैं, तो इसमें प्रशिक्षण की भी जरूरत है क्या, उसमें ली है?
1: हम प्रशिक्षण लिए हुए हैं।
0: क्या चीज?
1: मतलब ग्रुप में जाके किस तरह से ढंग बात तो करना अच्छा, है
0: लोगों को किस तरह से
1: कन्विंस करना है,
0: किस तरह से उसको जागरूक करना है, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग कितने दिनों का ट्रेनिंग था?
1: एक बार 5 दिन का लिए थे, फिर 10 दिन 10 दिवसीय भी लिए हैं।
0: कितना दिन पहले ये आप ट्रेनिंग ली थी?
1: लिए हुए बहुत दिन हो गया और फिलहाल में 5 दिन का लिए हुए।
0: अच्छा, अब ये हमको बताएंगे जो JSLP के माध्यम से सारा कुछ चल रहा है, तो इसमें आने का जो आपके अंदर जो है भावना जो है जज्बा है, वो कैसे आपके अंदर आया?
1: जेंट्स तो कमाता है, मर्द अपना काम करता है, लेकिन लेडीज का भी कुछ पर्सनल काम रहता है। हर काम के लिए तो मर्द से पैसा नहीं ना मांगेगा, इसलिए अपना पैर में खड़ा होने के लिए ही हमें
0: जरूरत के हिसाब से कब किसको कितनी जरूरत हो, कितने पैसे की जरूरत होती है, वो तो समय बताता है। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा पुरुष के पास नहीं है या वो घर में नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर महिलाओं को कुछ रकम की जरूरत पड़ गई, राशि की जरूरत पड़ गई, तो किसी का मोहताज नहीं हो, कहीं हाथ नहीं उसको फैलाना पड़े, इसके लिए उसके पास अपना कुछ पैसा होता है या होना चाहिए, जिसके लिए सारा कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें इस ग्रुप में कितनी महिलाएं आती हैं?
1: इस ग्रुप में तो 31 SHG मतलब समूह है।
0: अच्छा,
1: 31 SHG में हम लोग घूमते हैं।
0: अच्छा, घूमते हैं आपको। अच्छा, आप जो आपको भी किसी तरह का सहायता मिला हुआ है?
1: हाँ, हम अपना समूह से ही ऋण लिए हुए हैं, ऋण RF के माध्यम से। अच्छा। RF आता है जो कि 15,000 का रहता है,
0: 15,000 का ऋण आता है,
1: जो कि जो उसमें वापस नहीं करना पड़ता, हम लोग का समूह का ही रहता है, तो उससे हम लोग रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण लिए हुए हैं।
0: 15,000 का जो आपको ऋण मिलता है, तो पहली बात तो ये आगे उसको वापस नहीं करना,
1: नहीं करना है।
0: वो 15,000 किसी एक के पास होता है, वो नहीं जाता है, वो
1: मतलब जिसको जरूरत है वो ऋण ले सकता है, जिसको भी जरूरत है, मतलब
0: 15,000 में से किया अलग से?
1: नहीं, अलग से CIF पैसा आता है, वो 50,000 का रहता है, और बैंक ऋण भी आता है, वो मतलब साल साल में रेन्युअल होता है तो बढ़ते जाता है पैसा, तो हम लोग का 3 लाख रुपया तक का ऋण लिए हुए हैं हम लोग, पूरा SHG मिल के ही लिए।
0: और ये सब रोजगार को ही बढ़ाने के लिए, बढ़ा देने के लिए ये सारा कुछ ऋण मिलता है जो आपको, ये टोटली जो बात अगर हम देखेंगे तो सरकार के माध्यम से,
1: सरकार
0: की तरफ से आता है। तो इस जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, इस ओर अग्रसर हैं।
1: हाँ, हर कोई अलग अलग बिजनेस करता है, किसी को एक बिजनेस के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
0: जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं भाई तुम भी करो, ये तुमको ये करना ही करना है। मतलब किस तरह के लोग कार्य मतलब बिजनेस कर रहे हैं?
1: कोई गाय पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई गाड़ी में लगा दे रहा है, कोई मेरा तो पर्सनल होटल है और गाय में लगाए हुए, हम ऋण लेके अपना।
0: आप गाय ली?
1: गाय भी लिए हुए।
0: कितनी गाय हैं
1: अभी? एक गाय है जो दूध देती हुई है और दो बछिया है।
0: तो अब तो गाय में भी लगाई है पैसा, उसके बाद आप होटल आपने पैसा लगा दिया। तो ये जो होटल में भी जो आपने जो पैसा लगाया, इसका उद्देश्य क्या है?
1: उद्देश्य है कि मतलब मेरा हस्बैंड जो है इधर उधर नहीं जाएंगे, अपना एक जगह स्थायी रहेगा दुकान, उससे जो मुनाफा होगा तो हम लोग का भी होगा।
0: नहीं, यहाँ पर जैसे है कि कार्य करने के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। कभी अपने शहर अपने गांव को छोड़ करके दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता था या जाना पड़ता है, तो वैसी स्थिति नहीं है। लोग घर गांव में ही रह करके अपना स्वरोजगार अपनाए और उसमें आमदनी कमाए और मुनाफा बढ़ाए और फिर जीवन शैली जो है उसमें बदलाव आए। तो ये जीवन शैली में बदलाव आने की जो बात आ रही है, तो आपने जो होटल किया है उसमें किस तरह की तब्दीली परिवर्तन आपने पाया अपने जीवन में?
1: पहले तो गड्ढा में था, तो उसको हम लोग ऊंचे जगह में करवाए, ऊंचे जगह में करवा के उसमें
0: आपके जीवन में जैसे आपके बच्चों की पढ़ने लिखने का जो मामला,
1: ये बदलाव हम लोग 2021 में किए हुए हैं।
0: अच्छा, 2021 में वो होटल का प्रारूप ने बदला है। लेकिन वहाँ से जो कितने दिनों से वो होटल चला रहे हैं?
1: होटल काफी टाइम से था, लेकिन नीचे गड्ढा में अच्छा, था तो जिसमें कि हम लोग का इनकम अच्छा नहीं आता था,
0: नहीं आता था। लेकिन अभी उससे अच्छा खासा आमदनी, अच्छा खासा मुनाफा है। तो उसने लाइफ स्टाइल अगर हम कहेंगे, जीवन शैली में जो बदलाव, उसमें क्या फर्क पड़ा है घर में लोगों के अंदर?
1: आमदनी तो ठीक ठाक है, इसके चलते मतलब सुबह में दुकान जाते हैं मेरा हस्बैंड, दुकान से आके फिर देखते हैं तो इनकम ठीक ही होता है।
0: हम ये जानना चाहते हैं इनकम जो आ रहा है उसका जो प्रभाव जो है घर में वो कितना किस तरह का आया है?
1: प्रभाव ठीक है सर,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: मतलब जैसे बाल बच्चों को पढ़ने पढ़ाने लिखाने का जो मामला है उसमें फायदा हो रहा है, उसमें मदद मिल रही है, या फिर घर मकान के बनाने का भी जो स्थिति जो होता है उसमें बदलाव आया है?
1: हाँ, उस दुकान के माध्यम से भी हम बहुत सारा चीज कर चुके हैं, जैसे कि बच्चा लोग को हम एडमिशन करवाए थे लॉकडाउन के चलते, अभी पढ़ाई बंद है, लेकिन ट्यूशन व्यूशन 2-3 जगह करवा रहे, तो उसी के माध्यम से हो रहा है,
0: मदद मिल रही है। अच्छा, आपने कहा कि आप जो आपने जो होटल किया है, तो होटल में किस तरह का आपका क्या भूमिका आपका होता है, क्या रोल होता है
1: सर? जैसे कि जब ग्राहक
0: अगर

0: महिला है।
1: हाँ।
0: पुरुष तो लोग तो आप जितने जनरली दुकान होटल होते हैं सब उसे मर्द लोग काम करते हैं, पुरुष लोग काम करते हैं, आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप वहाँ किस तरह का योगदान दे रही हैं और किस तरह से आपको वहाँ से फायदा मिल रहा है?
1: अगर मेरे पास टाइम रहता है एसएचजी ग्रुप या तो घर का काम निपटा के अगर हम टाइम वैसा रहता है तो एक बार चल जाते हैं दुकान, जाके देखते हैं कि किस तरह से मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, वहाँ पर सहयोग भी करते हैं, बनाने बनाने में भी सहयोग करते हैं, वो आता है।
0: अच्छा, ये सिर्फ देखने के लिए चले जाते हैं?
1: नहीं नहीं, हम बनाने के लिए भी आता है वहाँ, जैसे जो भी मिठाई बनता है या समोसा सब बनता है मेरा दुकान में।
0: अच्छा, अच्छा।
1: वो सब हमको बनाने के लिए भी आता है, तो उसमें हम हेल्प भी करते हैं।
0: तो महिला के नाते जो आप ये काम होटल का जो काम कर रहे हैं, ये कैसा आपको अनुभव इसमें हुआ है? और भी महिलाएं अगर चाहे किस तरह के काम करना चाहें तो क्या वो उसमें सफलता उसको मिलेगी?
1: हाँ, सफलता मिलेगा।
0: तो मतलब ये कार्य करना चाहिए,
1: कार्य करना चाहिए।
0: तो शांति देवी जी, आप जेएसएलपीएस से जुड़कर एसएचजी के माध्यम से आपने स्वयं को स्वरोजगार से जोड़ा है, स्वावलंबन की ओर आप अग्रसर हैं, साथ ही खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, ये बेहद काबिल तारीफ है। यही नहीं, आपने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, घर परिवार के साथ साथ औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है, पुरुषों की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दे रही हैं। आपके गांव के लोग भी इस ओर अग्रसर हैं और हमारी कामना भी है, हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं कि आप और आपके साथ आपका ये जो गाँव इस ओर अग्रसर है उसमें तरक्की करे और आपकी तरक्की की राहें हमवार होती रहें। आपने अपना कीमती समय और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे शांति देवी से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रही थी एसएचजी से जुड़कर आत्मनिर्भर होती ग्रामीण महिलाओं के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। और चलते चलते आइए सुनते चले एक गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत कश, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत 1942 ए लव स्टोरी। सुनते हैं इस फिल्म का गाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
6: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
7: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम।

0: कुमार, पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत, पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित, राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। रांची में डुरंड कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम, जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: मन की बात कार्यक्रम को आज झारखंड समेत देश भर में लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्थित चाराडीह आवास पर सामूहिक रूप से इसका श्रवण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी स्थित पैतृक गांव कुच्चू में कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांकेर रोड स्थित भाजपा के मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कारगिल विजय दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड द्वारा रांची में आयोजित समारोह में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
2: आज आवश्यकता है कि हमारे युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और सेवा के इन आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने वीर सैनिकों के सपनों का एक ऐसा भारत बनाएंगे जो समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में गौरव के साथ अग्रणी हो। यही हमारे अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: कारगिल विजय दिवस पर आज गुमला में लांस नायक अल्बर्ट एक्का समेत शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद किया गया।
3: सभी वासियों से और भी आग्रह करते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं, हम सैनिक न बन सकें तो कम से कम उनका सहयोग, सम्मान और समर्थन जरूर करें। इस कालखंड में जो विक्रम बत्रा और ऐसे मनोज पांडे जी जैसे लोगों ने जो अपने शहादत दी, हम उनको भी नमन करते हैं। आज जो विकृतियां हैं समाज में, हम इनको आने वाले समय में दूर करने का प्रयास करेंगे।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के रांची पिस्का पलमा खंड पर पतराचोली टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से टोल टैक्स लागू हो गया है, जिससे रांची गुमला मार्ग पर सफर महंगा हो गया है। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन के लिए एकल यात्रा का टोल 40 रुपये तथा 2 एक्सल बस और ट्रक के लिए 140 रुपये निर्धारित किया गया है। NHAI ने 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए 360 रुपये मासिक पास की सुविधा दी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब

0: यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, धांधली और पेपर लीक का मामला चरम पर है। इस बीच केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर राजनीतिक मंच पर बयानबाजी तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच की मांग दोहराई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें चेताया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में राज्य में विकास की उम्मीद बेमानी है।
1: सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रमाणिकता से उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करते। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। और इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप पूरे मामले को आप CBI से जांच कराइए।
0: इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने JPSC और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े विवादों पर भाजपा पर पलटवार किया है। श्री तिर्की ने आज गुमला में पत्रकारों से बातचीत में तत्कालीन राज्य सरकार और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
2: कल तक आप बोलिएगा कि भाई पेपर लीक परीक्षण है, ये बात तो 3 साल से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पेपर लीक। आप मानने के तैयार नहीं थे, बोल रहे थे कि विदेशी फंडिंग से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, तो धर्म का मामला को जोड़ देते थे। आखिर इस्तीफा देना पड़ा ना। इंतजार कीजिए, झारखंड में भी जांच चल रही है, ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे।
0: देवघर पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिस बनकर घरों में छापेमारी करने के नाम पर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SDPO कुलदीप कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से देवघर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं।
3: साइबर क्रिमिनल्स के यहाँ चिन्हित करते थे और उसके घर में जाकर लूटपाट करते थे और पुलिस का धमक दिखाकर, डर दिखाकर उनके घर से जो पैसा होता था और जो सामान होती थी उसे लूटकर चले जाते थे। और यह वर्दी गैंग की तरह ही कार्य कर रहा था, एक गिरोह बना लिया था।
0: राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला और खूंटी समेत कुछ अन्य जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल इन दोनों के अलावा रांची और लोहरदगा में भी भारी बारिश के आसार हैं। आगामी 28 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची में आज से डुरंट कप टूर्नामेंट रंगारंग आगाज के साथ शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य और झारखंड की लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होने वाले हैं और 1 क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों से कराया अवगत। पर्यावरण, जल संरक्षण और उपलब्धियों का किया जिक्र। कारगिल विजय दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने रांची में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित, बलिदान को किया याद। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भाजपा पर किया पलटवार। रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। और रांची में डुरंट कप का रंगारंग आगाज, सेना के शौर्य और लोक संस्कृति का दिखा अनूठा संगम, जमशेदपुर FC और डिफेंडर्स FC के बीच पहला मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक

0: प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की पारदर्शिता को लेकर SMS करने की व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: लगभग हमारे जिला में 98% SMS हो रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो 2% जो हमारे स्कूल बच रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और ये कार्रवाई कोई नई नहीं है, इससे पहले भी उन लोगों को स्पष्टीकरण लिया गया था। जो भी स्कूल SMS नहीं कर रहे थे उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। वैसे जो है हमारे यहाँ अभी 34 ऐसे स्कूल हैं जहां पर SMS नहीं हुआ है कल, वैसे स्कूलों पर जो है आज हम लोग स्पष्टीकरण के साथ उनका वेतन SM का वेतन स्थगित करने जा रहे हैं। अगर जो है इसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आती है तो इसको जो है हम स्थापना में रहकर उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करेंगे, या तो उनका निलंबन की कार्रवाई की जाएगी या उनका वेतन जो है वेतन कटौती का कार्य किया जाए।
1: राज्य सरकार ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से विद्यालयों में लाने के लिए सुबह की धूप के नाम से अभियान शुरू की है, ताकि ड्रॉप आउट बच्चे पढ़कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सके। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि
2: पूरे राज्य में गुमला जिला के 2 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको चिन्हित किया गया है। एक हमारा घाघरा ब्लॉक है जिसमें 99 स्कूल के पोषक क्षेत्र को, और दूसरा भरनुआ है जहां 58 स्कूल के पोषक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं। उसको ध्यान में रखकर जो है एक सितेंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सितेंग एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ है सुबह की रोशनी। इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और यह अभियान 7 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक जो संचालित है।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत गुमला जिला के किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि
3: हम लोगों को इसमें धान का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हाइब्रिड धान आया है, जिसमें हम लोगों को लक्ष्य 360 हेक्टेयर का दिया गया है और 54 क्विंटल इसमें धान हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही परसेस में जो हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है अरहर और उड़द का दिया गया है।
1: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र में अवैध खनन तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि
4: हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ बॉक्साइट क्षेत्र से वन के इलाके में से टालीनाथ के टेम्पल जो है उसके ऊपर आपका लुचुट पाट पड़ता है, वहां सूचना थी कि वहां पे इलीगल बॉक्साइट माइनिंग हो रहा है फॉरेस्ट लैंड में। तो हमारी टीम ने इंटेलिजेंस गैदर किया और फिर चीजों को ट्रैक किया और फिर वहां पे बॉक्साइट का ट्रक सीज हुआ। उसके अलावा करीब करीब 5 गाड़ियां और पकड़ाई हैं जो कि आपको टिम्बर लेके जा रही थी इलीगल तरीके से बिना परमिशन के, वहां पर सीजर हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि जलावन का लकड़ी जो होता है वो पिकअप पे ट्रैक्टर्स पे बेतहाशा मार्केट मतलब बेतहाशा मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जंगलों से काट के लेके जाते हैं, तो उससे भी कार्रवाई हुई है।
1: बहरहाल गुमला जिला में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं कृषि विभाग भी किसानों को लाभ दे रही है। इसके साथ ही वन विभाग भी वन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है, जो एक बेहतर कदम है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना। फिल्म का नाम है हीरो। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की है।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चुपके चुपके में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम जानकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। आज के इस कार्यक्रम में गीतों के सुहाने सफर पर आपके साथ है आपकी दोस्त माधवी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज है। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म अभिलाषा में। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया गाना, फिल्म का नाम है अभिमान।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। चित चोर, सुनते हैं इस फिल्म का गाना हेमलता और यशोदास की आवाज में।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना हेमलता की आवाज में। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आखिरी खत।

कभी कभी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज थी। आइए अब सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: मीडियावेव 546।
1: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। समाचार संध्या के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आपको सही दिशा दी जाती है, आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों

0: से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर

0: देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
0: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

वीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

में सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासूवास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुड़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग. दी. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसी लागला लंके।

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हम आपके पसंदीदा फरमाइशी फिल्म गीतों के साथ। करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है वंदनी, गायिका है लता मंगेशकर। पसंद आप सभी श्रोताओं की। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। खरसावा झारखंड से आप हैं सुकरा नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, मंजू नायक और प्रद्युमन नायक। झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू। एकता कॉलोनी रोहतक से

सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, डम्बाडी हल्ली बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, अपराजिता, शम्मी, अपूर्व और टुकू, जामाडोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी और बेगम फरीदा रफीक। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर वंदनी फिल्म का ये गाना।

आइए सुनते हैं सूरज फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया उर्वशी, अमन बेबी, सोना बाबू और आरके वर्मा। ग्राम ध्रुवत बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। नूरा हजारीबाग से बिहारी महतो, रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार, निखिल कुमार, बालेश्वर प्रसाद, उमेश प्रसाद कुशवाहा, बॉबी कुमार, डब्लू प्रसाद। खिरगांव मालीटोला से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार और अरविंद मालाकार। डेमोटाड हजारीबाग से श्रुति, राधिका, मिली, मधु, विनीता, रघु, आशीर्वाद, गोपाल, भैरव जी और मधुसूदन। न्यू एरिया दूसरी गली से मनस्विनी सिन्हा, अनन्या, बुलबुल, प्रियांशु और टिनटिन।

आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का गाना, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज है, पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, जामा मस्जिद रोड, हजारीबाग के पास से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन।

बिल्किस फातमा कनीस फातमा शहनाज फातमा पंचमंदिर रोड हजारीबाग से आप है कलाम अहमद आरजू नीलोफर परवीन आरजू हबीबा खातून आरजू कहकशा परवीन आरजू इरफान अहमद आरजू शबाना परवीन आरजू फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू नया टोला भिगनपुर भागलपुर से गणेश पासवान सुधा पासवान पूजा पासवान विकास पासवान नितिन पासवान मनोज पासवान पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया गीता रानी जाजौरिया गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया।

प्यासा सावन, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज है। पसंद आप सभी श्रोताओं की। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, ओल्ड लिसस ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

आइए सुनते हैं गुड्डी फिल्म का गाना, जिसे गाया है वाणी जयराम ने और पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। छिपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका, शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, हजारीबाग पतरातू से वेसल खालखो, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और उनका पूरा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर जयतेग और मीका, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। सुनते हैं इन सभी की पसंद पर गुड्डी फिल्म का ये गाना।

अगर आप भी अपने पसंद का कोई गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमारे पास। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी चाहत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग। और इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम शामी गजल। आइए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

0: money. His money.
1: Got my nigga.
0: Shukriya.

कार्यक्रम की अगली पेशकश गजल लिखी है साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम गजल।

पंकज उदास के गाए इसी गजल के साथ कार्यक्रम शामी गजल यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी।

0: राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defense Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48kg event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85kg in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105kg in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190kg. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha tomorrow. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall tomorrow. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. The sacred Adharapna ritual of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being solemnly observed on their respective chariots at Puri in Odisha this evening, drawing thousands of devotees. During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। यही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दे शुभ रात्रि। जय हिंद।